सब लोई। श्लोक महला तीजा, मन प्रतीत ना आईया, सहज ना लगो भाव, शब्द साधना पायो, मन हठ क्या गुण गाय। नानक आया सो प्रवान है, जे गुरमुख सच समाए। महला तीजा, अपना आपना पछाणे मूड़ा, अवरा आख दुखाए, मुंडा दी खसलत ना गईया, अंधे विछड़ चोटा खाए। सतगुर कै भै भन ना घड़ियो, रह अंक समाए, अन दिन सहसा कदे ना चूकै, बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला, नित तन

पाए। गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गत मत शब्दे पाए। नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचों आप गवाए पौड़ी। जिस दै चित वसिया मेरा स्वामी, तिसनों क्यों अंदेसा किसै गल दा लोड़ी है। हर सुख दाता सबना गल्लां का, तिसनों त्याए दया केव निमख घड़ी मुंह मोड़ी है। जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए, नित संत जना की संगत जाए बहिया मुंह जोड़ी है। सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़ी है। हर कृपा ते हुआ हर भगत, हर भगत जना कै मुहे दिठे। जगत तरिया सब लोड़ी है। श्लोक महला तीजा, सारस ना जल जाऊ। जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए। जिन हर हर मन वसाया, महला तीजा। सारस ना जल जाऊ, जिन हर का नाउ वसारिया। नानक गुरमुख रसना हर जपै, हर कै नाए प्यारिया पौड़ी। हर आपे ठाकुर सेवक भगत, हर आपे करे कराए। हर आपे वेखै विगसै आपे, जित पावै तित लाए। हर इक ना मार्ग पाए आपे, हर इक ना उजड़ पाए। हर सच्चा साहिब सचत पावस, कर वेखै चलत सुबाए। गुर

आवत जातना दिसहि ना परपंखी ताहि बहुरंगी रस भोगिया शब्द रहै निर्वाण हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान पौड़ी आपे धरती आपे है राहत आप जमाए पिसावै आप पकावै आप भांडे दे परोसै आपे ही बह खावै आपे जल आपे दे शिंगा आपे चुली परावै आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावै जिसनु कृपाल हुए हरे आपे तिसनु हुक्म मनावै। सलोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंदना पाप पुन संबंध ममता मोह सो बंदना पुत्र कलत्र सो तंद जह देखा तह जेवरी माया का संबंध।

जगत उपाया करत है, दान सबना कौ दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करै सो थिया। श्लोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवह सद साचा, अनदिन सहज प्यार, सदा आनंद गावह गुण साचे, अर्ध उर्ध उर तार, अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म

0: ना पाई हन दिन रह सदा गुण गाय बिन कर्म किने ना पायु
1: भौक मोए बिल लाय
0: गुर कै शब्द मन तन भिजे आप वसै मन आय नानक नदरी पाई है आपे लय मलाई पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथै आप भीजै आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजै आप परविरत आप निर्विरति आपे अकथ कथीजै आपे पुन सब आप कराई आप लिप्त वर्तीजै
1: आपे सुख दुख देवै करता
0: आपे बख्श करीजै श्लोक महला तीजा सीखा अंदर हो जोर छाड तू पहो कर झल गवाए गुर कै भय कीते निस्तरे भय विच निरभउ पाए मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए शांति विच कार कमावनी आ खसम पाए थाए नानक काम।

खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदाता।

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया। आपे दस अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लया। आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

साहिब संभाले हो साहिब सदा हजूर है पर मैं के शौड़ कट के अंतर ज्योत तरे हो हर का नाम अमृत है दारू एहो लाए हो सतगुर का भाणा चित रखो हो संयम सच्चा ने हो नानक ऐथे सुख है अंदर रख सी अगे हर स्यों केल करे हो पौड़ी आपे भार अठारह बनस्पत

दूर होए बरल पवे बिच आए अपना पराया ना पछाणे खसम हो तके खाए जित पीता खसम विसरै।

गुण प्रसाद जीवत मरे ता फिर मरना होए पौड़ी। जिसदा कीता सब किस होए तिसनो परवाह नाही किसे केरी। हर जियो तेरा दिता सब को खावे सब मोहताजी कढ़े तेरी। जे तुदनो सलाहे सो सब किस पावे।

गुर प्रसादी जीवत मरै हुक्मै बूझै सोय। नानक ऐसी मरनी जो मरै तां सद जीवन होए पौड़ी। जां आप कृपाल होवै हर स्वामी तां अपना नाउ हर आप जपावै। आपे सतगुर मेल सुख देवै अपना सेवक आप हर भावै। अपनिया सेवकां की आप पैज रखै अपनिया भगतां की पैरी पावै। धर्म राए है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवै। जो हर का प्यारा

सो चेतन होए अज्ञानी अंध कमाए नानक इथै कमावै सो मिलै अग्गै पाए जाए महला तीजा।

लाए ध्याना आपे मोनी वरतदा आपे कथे ज्ञाना कौड़ा किसै ना लगई सबना ही पाना उस्तत बरन ना सकी है।

सा अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहु सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहु संत प्यारी पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहु सलूक महला तीजा सब किश हुक्मे आमदा सब किश हुक्मे जाए जे को मूर्ख आप हो जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनो कृपा करे रजाए महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए किस जोगी की नगरी सब को वसे भेखी जोग ना होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंदे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिये मुंदे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंजी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

छड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागणी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाई, नाम परमल हृदय रहया समाई, नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग।

मन आए परमे भूला फिरे संसार मर जन्मे जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी।

सच वस्या मन आई, सच कमावै सच रहै, सच्चे सीव समाई। वडहंस महला चौथा घर पहला।

हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हौ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी हौ क्यों कर पिर को मिलो इयानी जो पिर पावे सा सुहागण।

आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा। हौ जाए पुछा अपने सतगुर है गुर पुछ मन मुग्ध समझावा। भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए। हौ सब वेश करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे।

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

आओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे रहाओ दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते जिसह जनाब हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल तल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे

साध संग हर अमृत पीजे, ना जियो मरे ना कबहू सीजे, वडभागी गुर पूरा पाइय, गुर कृपा ते प्रभु ते आइय रहाउ। रतन जवाहर हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रभ भए निहाला, जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना, कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा, बढ़ा।

अंतर भुख न उतरे अमाली जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन धीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई।

तार संभाली, मैं निर्गुण को रख लेता। हों पई उडीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पेर कितै ना लेखा। इहो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिन आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए। जां सह बात ना पुछिया अमाली, तां बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम भावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलया कर्म होवा तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे बड़हंस महला पहला करहो दया तेरा नाम बखान सब उपाय आप आपे सर्ब समान सर्बे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझ ही किए राजे किकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावह जो तेरे मन भावहे माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहे एक मूड मुग्ध

कब हो ना जावे, राजो ता तेरा सदा निहचल, एहो कब हो ना जावे, चाकर ता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हों बलिहारी सदा हुआ, एक तेरा नावे, जुगा जुगंतर भगत तुम्हारी।

रंग रत्ती मुइये सुभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर त्यों ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुरु कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिरे आपे साचै साहि सवारी निर्गुण वंतड़िए पिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहिया भरपूरे राम फिर रव रहिया भरपूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही भरपूरे नानक कामन सा फिर भावै।

नानक हर की भगत नराली गुरमुख विरलै कीजै गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए धन खेती वापारा हर नाम ते आए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज घर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हऊ मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

साच्या शब्द लिव लाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रहाय। दूजे पाए परम भगुती, मन मुख मोही जम काल। कह नानक सुन मन मेरे, तू सदा सच संभाल। मन मेरिया अंतर तेरा निदान है, बाहर वस्त ना पाल। जो भावे सो पुंच तू, गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे, अंतर हर नाम सिखाई।

पारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुटियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुगद गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणी, बहुर ना भवजन फेरा, माया मोह सब बरल है,

सकै कोई। जिन शिष्ट साजी सो कर वेखै तिस जेवड़ अवर ना कोई। मनमुख अंधा तप तप खपै बिन शब्दै शांत ना आई। नानक बिन नावै सब कोई भुला माया मोहे खोआई। एहो जग जलता देख कै भज पय हर सरनाई। राम अरदास करी गुर पूरे आगे रख लेवो हो देहो वडाई। राम रख लेवो हो सरनाई हर नाम वडाई। तुद जेवड़े अवर ना दाता टेवा लागे सेवड़ भागे जुग जुग एको जाता। जात सत संयम कर्म कमावै बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई। जो हर मत दे सा उपजै होर मत ना काई। राम अंतर बाहर एक तू आपे देह बुझाई। राम आपे देह बुझाई अवर ना पहाई। गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा। साचै शब्द सुभाखिया घर है निज घर पाया सतगुरु दे वडाई। नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई। वडहंस महला चौथा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन सतगुर प्रीत लगाई। राम हर हर।

जप हर हर नाम भिक्षे राम, जप हर हर नाम कमल परगासे, हर नाम नमंग निद पाई, हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसे, हौ जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आण मलावै।

वह तिन के जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी श्रद्धा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी श्रद्धा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमक नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे श्रद्धा लाए मलाए हरे आपे आप सुवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे हरे आपे

चरण हम पाया राम, तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर बनासे, सतगुर सेव परम पद पाया, हर जपया सास ग्रासे, जिनको हर प्रभ कृपा धारी, ते सतगुर सेवा लाया, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया।

सतगुर पुरख ना पाया, हम चातरक दीन, हर पास बेनंती राम, गुर मेल मेरा प्यारा, हम सतगुर करह भगती राम, हर हर सतगुर करह भगती, जहां हर प्रभ कृपा तारे, मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे, कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चातरक दीन, हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर, सतगुर मेल सुखदाता राम, हम पूछे हैं, सतगुर पास हर बाता राम, सतगुर पास हर बात पूछे हैं, जिन नाम पदार्थ पाया, पाई लग हैं नित कर हैं बेनंती, गुर सतगुर पंथ बताया, सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता, हर कृपा कर, गुर सतगुर मेल सुखदाता, सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हूं मैं पापा राम, जप हर हर नाम, लथे अड़े जग तापा राम, हर हर नाम जिन्नी अरादया, तिनके दुख पाप नवारे, सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना, जम कंकर मार बिदारे, हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते, दुख लाथे पाप संतापा, सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हूं मैं पापा, जप हर हर नाम, मेरा मन पाया राम, मुख गुरमुख जप, सब रोग गवाया राम, गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरोगत भये शरीरा, अनदिन सहज समाध हर लागी, हर जपया गहर गंभीरा, जात अजात नाम जिन त्याया, तिन परम पदार्थ पाया, जप हर हर नाम, मेरा मन पाया, हर तारु कृपा, कर कृपा लेहु उबारे राम, हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम, हर दयाल शरणाया, तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया, सतगुर भेट राम रस पाया, जन नानक नाम उधारी,

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाने नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देहे घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुर जी।

इहो तन मन दित्तड़ा वारो वार आराम। तन मन दित्ता पवजल जित्ता चूकी कान जमाणी। अस्थर थिया अमृत पिया रहया आवण जानी। सो कर लता सहज समदा हर का नाम अधारा।

0: तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरण आए पै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरे ठाकुर तिनका लेखा ना गणया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया बेअन।

से परधान्य हर से तीरंग राते हर रसै अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणी कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भये दुख नाश भरम बनाश तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा।

यहा पूर्व कमाया धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंदे लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इथे तंदा कूड़ा चार देहा आगे सर पर जाना आगे सर पर जाना ज्यो मेहमान काहे गर्व कीजै जित सेवे दरगाह सुख पाई नाम तिसे कालीजै आगे हुक्म न

जे कोई मर जाने मरन मुनसा सूरिया हक है जो होए मरन परवान सूरे से आगे आखिय है दरगाह पावे है साची मान दरगाह मान पावे है पत स्यों जावे है आगे दुख ना लागे कर एक त्यावे है ता फल पावे है जित सेवे है पौ भागे है

हारेवा रुवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रुवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारू ज्यो बाजीगर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखी नानक सहज सुपहाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवा।

अपने कंत संभाल है, ना कदे लग्या विजोगो, सचड़ा फिर सलाही है, सब किस करना जोगो, सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है, आपे लए मलाई, सा धन प्रिय कै रंग रत्ती, विचों आप गवाई फिर काल ना खाई, गुरमुख एको जाता, कामन इच पुन्नी अंतर भिन्नी, मिलिया जग जीवन दाता, शब्द रंग राती जोब नमाती, फिर कै अंक समाए, सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है, आपे लहे मलाए, इन्नी अपना कंत पछाणिया, औतिन पूछो संता जाए, आप छोड़ सेवा करे, फिर सचड़ा मिले सहज सुपहाय, फिर सच्चा मिले आए साच कमाए, साच शब्द धन राती, कदे ना रांड सदा सुहागण, अंतर सहज समाधि, फिर रहया परपूरे वेख हदूरे, रंग माणे सहज सुपाय, इन्नी अपना कंत पछाणिया, हौं तिन पूछो संता जाए।

प्रेम समाय जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ आरे सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप।

प्यारी मैं प्रभ सच पछाणिया होर भूली अवगणयारी मैं सदा रावे पिरे अपना सचड़ै शब्द विचारी सच्चै शब्द विचारे रंग राती नारे मिल सतगुर प्रीतम पाया अंतर रंग राती सहजे माती गया दुश्मन दुख सबाया अपने गुर कौ तन मन दीजै ता मन भीजै कृष्णा दुख नवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगणयारे सचड़ै आप जगते अपाया गुर बिन घोर अंधारो आप मलाए आप मिले आपे दे प्यारू आपे दे प्यारू सहज वपारू गुरमुख जन्म सवारे धन जग मह आया आप गवाया दर साचै सचियारू ज्ञान रतन घट चानण होआ नानक नाम प्यारू सचड़ै आप जगत अपाया गुर बिन घोर अंधारू वडांस महला तीजा इहो शरीर जजरी है इसनो जर पहुंचै आए गुर राखे से उभरे होर मर जमै आवै जाए होर मर जमह आवह जावह अंत गए पछतावह बिन नावै सुख न होई ऐथै कमावै सो फल पावै मनमुख है पत खोई जमपुर घोर अंधार महा गुबार ना तिथै भैण ना भाई

सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे है हर मन वसै तिथे भौ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कार्ज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्नी सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़ है सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीत मैं जिन हऊ मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जप्यो संतो राम नाम भौजल बिख तारी गुरपूरै हर उपदेसया।

काम क्रोध विनाश सतगुर का भव छोड़िया मन हट कामना आवै रास जमपुर बदे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई।

ना होवे, अचिंत वत्सै मन आय, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाय, मैल गई मन निर्मल होवा, अमृत सारे तीर्थ नहाय, सज्जन मिले सज्जना, सच्चै शब्द सुपहाय, घर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाय, पाखंड जम काल ना छोड़े, लै जासी पत गवाय, नानक नाम रते से उबरे, सच्चे सिउं लिभ लाए पौड़ी, तित जाए बहु सत संगति, जितै हर का हर नाम बिलोइयै, सहजे ही हर नाम लेहो, हर तत ना खोइयै, नित जप्यो हो हर हर दिन सरात, हर दरगाह ढोइयै, सो पाए पूरा सतगुरु, जिस तुर मस्तक लिलाट लखोइयै, तिस गुर को सब नमस्कार करहु, जिन हर की हर गाल गलोइयै। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना।

ताप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेविए शब्द वसे मने आए मन तन शीतल शांत होए तृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचो आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे जे सच रह लिवलाए चिंता मूल ना होवे हर नाम रज्जा आघाए नानक नाम बिना नह छूटिए हों मैं पचह पचाए पौड़ी जिनी हर हर नाम ते आया तिनी पायड़े सर्ब सुखा सब जन्म तिन्ना का सफल है जिन हर के नाम की मन लागी भुखा जिनी गुर कै बचन आराध्या तिन विसर गए सब दुखा ते संत भले गुर सिख है जिन नाही चिंत पराई चुखा धन तन तिना का गुरु है जिस अमृत फल हर लागे मुखा श्लोक महला तीजा कल मह जम जंदार है हुक्मे कार कमाए गुर राखे से उभरे मन मुखा दे सजाए जम काल वस जग बांधिया तिसदा फरू ना कोई जिन जम कीता सो सेवी है गुरमुख दुख ना होए नानक गुरमुख जम सेवा करे जिन मन सच्चा हुए महला तीजा एहा काया रोग भरी बिन शब्द दुख हों मैं रोग ना जाए सतगुर मिले ता निर्मल होवे हर नामो मन वसाए नानक नाम त्याया सुख दाता दुख विसरिया सहज सुभाए पौड़ी जिन जग जीवन उपदेसिया तिस गुर को हों सदा कुमाया तिस गुर को हों खनिया जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया तिस गुर को हों वारन जिन हों मैं बेख सब रोग गुआया तिस सतगुर को वड पुन है जिन अवगण काट गुणी समझाया सो सतगुर तिन को भेटिया जिन कै मुख मस्तक भाग लिख पाया सलोक महला तीजा भगत कर है मर जीवड़े गुरमुख भगत सदा होए उन्ना को तुर भगत खजाना बख्शिया मेट ना सकै कोई गुण निदान मन पाया एको सच्चा सोए नानक गुरमुख मिल रहे

साध ना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवे नाम मन वसे विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने तेहो होवे तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिले वडियाई।

गुर की गल मन्नी, जो गुरमुख नाम के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा, मनमुख कायर रूप है बिन नावै लक नाही, अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही। नानक गुरमुख हो है ता उबर है नाही, ता बदे दुख सहाय। महला तीजा, गुरमुख सदा दर सोहने गुर का शब्द कमाहे, अंतर शांत सदा सुख दर सच्चै सोभा पाहे। नानक गुरमुख हर नाम पाया तैजे सच समाए। पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई, गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई। गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई, बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई। गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। सलोक महला तीजा, सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव। उसनो सुख ना उपजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ। महला तीजा, ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो, जित सेवे जन्म मरण दुख जाए। सहसा मूल ना होवे हूं मैं शब्द जलाए, कूड़े की पाल विचों निकले सच वसै।

हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार, जित खाया हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनन, जित फिर नंगे ना होवे, होर पहनन की हमारी सर्द गई। हर नाम हमारा वणज, हर नाम व्यापार, हर नाम की हमको

पौड़ी जिन उपाए जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाउ भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरतै तिन विरलै लाखिया जन नानक भये निहाल प्रभ की पाखिया। श्लोक महला तीजा। सतगुर नो सब को वेखदा जेता जगत संसार दिठै मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करे विचार हम मैं मैल ना चुकई नाम ना लगे प्यार इक आपे बख्श मलायन दुबदा ताज विकार नानक एक दर्शन देख मर मिले सतगुर हेत प्यार। महला तीजा। सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार

0: मन हर सरनी पड़ रही है।
1: हर बिन कोई मार जीवाल ना सके।
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख इत तन धूड़ तमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यों झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यों वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंदन वहन रत्ता हितकारी शब्दै सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया जिह वा रस नहीं राई मन तन धन अपना कर जानिया दर की खबर ना पाई अखी मीट चलिया अंधियारा घर दर दिसै ना पाई जम दर बा

जुगत सबाई सतगुर सेव पदार्थ पावह छूटह शब्द कमाई सूचै भांडै साच समावै विरले सूचाचारी तंतै को परम तंत मलाया।

गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपेओ परम सुख पाईए निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाईए।

गुर साखी अंतर जागी, ता चंचल मत त्यागी। गुर साखी का उजियारा, ता मिटिया सगल अंधियारा। गुर चरणी मन लागा, ता जम का मार्ग भागा। भै विच निरभउ पाया, ता सहजै कै घर आया। पणत नानक बूझै को बिचारी, इस जग मह करनी सारी। करनी कीरत होई, जा आपे मिलिया सोई। सोठ महला तीजा घर पहला, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। सेवक सेव करहै सब तेरी,

प्रभ पाया छबदे हों मैं मारी गिरही मह सदा हर जन उदासी ज्ञान तत बीचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राखिया उर धारी एहो मनुआ दह दिस धाम दा दूजै भाई खुआया मनमुख मुगद हर नाम।

कर कर विगुते केहो चलै ना चल दिया नाल गुरमुख हो वै सो नाम त्यावै सदा हर नाम संभाल सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल सतगुर ज्ञान सदा घट चान अमर सिर बादशाह आन दिन भगत करह दिन राती राम नाम सच लाहा नानक राम नाम निस्तारा शब्द रते हर पाहा सूरठ महला तीजा दासन दास हुवै तां हर पाई विचों आप गवाई भगतां का कारज हर आनंद है आन दिन हर गुण गाई शब्द रते सदा एक रंगी हर सियों रहे समाई हर जियो साची नदर तुम्हारी अपनिया दासा नू किरपा कर प्यारी राखो हो पैज हमारी रहाओ शब्द सलाही सदा हो जीवा गुरमती भौ भागा मेरा प्रभ साचा अत सवाल्यो गुर सेव्या चित लागा साचा शब्द सच्ची सच बाणी सो जन अन दिन जागा महागंभीर सदा सुखदाता किसका अंत ना पाया पूरे गुर की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों भरम चुकाया हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा वो पाए गुर विचारा हर कै रंग राता शब्दे माता हम मैं तजे विकारा नानक नाम रता एक रंगी शब्द सवारन हारा सूरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी जिचर घट अंतर है सासा एक पल खिन बिसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा हर जियो तुम आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटोह वारिया सद ही तेरे नाम विटोह बल जाय रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होआ हर वस्या मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर सियों रहे आसमाई शब्द ना जान है से अन्ने बोले से कित आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम है वारो वारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी मान मुख मुग्ध गोबारा आपे कर वेख मार्ग लाए भाई किस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई ना मेट पाई करता करे सो होई नानक नाम वसया मन अंतर पाई अवर ना दूजा कोई।

आप राखै जो तेरे मन पाणी, तू गुण दाता शब्द पछाता, गुण कह गुणी समाणी, मन मेरे हर जियो सदा संभाल, अंत काल तेरा बेली होवे, सदा लिब है तेरे नाल रहाव, दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे, ना बूझ विचारी, निंदा दुष्टी ते किन फल पाया, हरनाक्ष नखह बिदारी, प्रहलाद जन सद हर गुण गावे, हर जियो लय उबारी, आपस कहो

अंत गए पछताए, सफल जन्म भगता का कीता, गुर सेवा आप लाए, शब्दे राते सहजे माते, अन दिन हर गुण गाए, नानक दास कह बेनंती, हौ लागा तिन कै पाए, सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई, जे गुर के पाणी विच आवे, अपने पाणे जो चले पाई, विछड़ चोटा खावे, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई, फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई, जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ, यो कटंब सब जी के बंधन पाई, परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही, गुरमुख मोख द्वारा, कर्म कर है, गुर शब्द ना पछाण है, मर जन्म है वारु वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई, कोई ना किस ही केरा, गुरमुख महल पायन गुण गावन, निज घर होए बसेरा, ऐथे बूझे सो आप पछाणे, हर प्रभ है तिस केरा, सतगुरु सदा दयाल है भाई, बिन भागा क्या पाईए, एक नदर कर वेखे सब ऊपर, जेहा भाव तेहा फल पाईए, नानक नाम वसे मन अंतर, विचों आप गवाई है, सोठ महला तीजा चौथुके, सच्ची भगत।

सरनाई। अपनी नदर करे पत राखै, हर नामो दे वडियाई रहाउ। पूरे गुरते आप पछाता, शब्द सच्चै विचारा। हिरदय जग जीवन सद वस्या, अज काम क्रोध अहंकारा। सदा हजूर रविया सब ठाई, हिरदय नाम अपारा। जुग जुग बाणी शब्द पछाणी, नाउ मीठा मनह प्यारा। सतगुर सेव जिन नाम पछाता, सफल जन्म जग आया। हर रस चाख सदा मन तृप्तिया, गुण गावै गुणी अगाया। कमल प्रगास सदा रंग राता, अनहद शब्द बजाया। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, सच्चे सच समाया। राम नाम की गत कोए ना बूझै, गुरमत हृदय समाई। गुरमुख होवै सो मग पजाणै, हर रस रसन रसाई। जप तप संयम सब गुरते होवै, हिरदय नाम वसाई। नानक नाम समल है से जन सोहन, दर साचै पत पाई। सोठ महला तीजा दुतुके, सतगुर मिलै उल्टी पई पाई। जीवत मरै तां बूझ पाई, सो गुरु सो सिख है पाई। जिस ज्योति ज्योत मलाई, मन रे हर हर सेती लिव लाए। मन हर जप मीठा लागै पाई, गुरमुख पाए हर थाए रहाउ। बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए। तोह कुटहै मनमुख कर्म करहै पाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार। आया सो परवान है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाईऐ पाई, गुर शब्दी मेलाए। सोठ महला तीजा घर पहला, तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै भाई, सदा हर के गुण गाय रहाउ। नामै ते सब उपजे भाई, नाए विसरै मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उभरे भाई, भवजल पार उतार। जग मैं लाहा हर नाम है भाई, हिरदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उभरे भाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा भाई, जित लग पार जन पाए। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

कमावे है। हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृप्तासे, विचों आप गवाई एहो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाई नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, घरै अंदर सच पाई सोठ महला तीजा, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते।

त्रै गुण माया भरम भुलाया, हम मैं बंधन कमाई, जमन मरन सिर ऊपर उभो, गर्भ जोहन दुख पाई।

राम नाम सुख होई, त्रै गुण सब तेरे, तू आपे करता, जो तू करह सो होई, नानक राम नाम निसतारा, शब्दे हम मैं खोई, सोठ महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाह, वणजारा जग आप है प्यारा, आपे साचा साहु, आपे वणजवा पारिया प्यारा।

प्यारा गुर खेवट आप चला आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखै पातशाह आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मला सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहुमणिया

आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए, सब ना रिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

प्यारा, तुन आप बजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आपे सतगुरु

आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपुरै मीठा लाया रहाऊ आपे धरती आप जा।

आप निमाणिया मान आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत संगत मिल त्याए तू हर हर

कृपा जल देव हो हर नाय हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया भाए सुभाई

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल भये है, कृष्णा शब्द बुझाई, सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, ता भ्रम काटे आ जाई, मेरे गोबिंद अपने जन को दे वड़े आई।

नाही, जे को रखै लुकाई, सब किस तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करह सो पाए, जन नानक अवर ना कोई, सोठ महला पंजवा घर पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किस हौ जाती किस आराधी, जा सब को कीता होसी, जो जो दिसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकू रलसी, निरपहो निरंकार भव खंडन, सब सुख नव निध देसी, हर जियो तेरी दाती राजा, मानस बपड़ा क्या सलाई, क्या तिसका मोहताजा रहाओ, जिन हर त्याया सब किस तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाता, नुखोट ना कब ही जाई, आनंद भया सुख सहज समाणी।

अज्ञान प्रगट भय सब ठाई सोई ज्ञानी सोई त्यानी सोई पुरख सुपहाई कहो नानक जिस भय दयाला ताको मन ते बिसर ना जाई सोट।

साध शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्ब थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बातै एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीव हो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाउ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्ब सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाईए हृदय त्याईए सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाए।

पंजवा कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या गावहो सुनहो पढ़हो नित पाई गुरपूरै तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई भगत वच्छल दयाला संतां की पैज रखदा आया आद बिरद प्रतपाला हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो हो सर्ब वेला मुख पावो हो जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो हो।

जोगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम इह हवाला, राख संतन कै पाछै।

मांगन कौ सगली दान देहे प्रभु पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायू।

अब कहां करे तू, जो फाटियो सगलो लेखा, महा आनंद भय सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मानिया, रंग रत्ते बिस्मादी।

तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भाने अंतर भेद जाने, ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

औखद मुख देवे काटे जम की फंदा रहाउ सम्राट पुरख पूर्ण बेधाते आपे करने हारा अपना दास हर आप उभारिया नानक नाम अधारा चौथ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लहो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो।

हेरो काट सिलक कीनो अपनो दासरो तौ नानक कहा निहोरो चोठ महला पंजवा पये कृपाल गुरु गोविंदा सगल मनोरथ पाए अस्थिर पये लाग हर चरणी गोविंद के गुण गाय फलो समूरत पूरा शांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई हर नाम निदान नानक जन पाया तगली इच्छ पुजाई चोट महला पंजवा गुर के चरण बसे रिद भीतर शुभ लखन प्रभ कीने।

जंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौरठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

नानक गुर पायो वड भागी तिस जे वड़े अवन ना कोई झूठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ के चरण निहारिया राखन हार है राखियो बारक सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की सरनाई जाकी सेवना बिरथी जाई रहाउ कर्म है सुख

राम रतन जास गाय, मिट गई चिंता सिमर अनंता, सागर तरिया पाई, हृदय हर के चरण बसाई, सुख पाया सहज धुन उपजी, रोगां घाण मटाई रहा, क्या गुण तेरे आख बखाणा, कीमत कहण ना जाई, नानक भगत पए अबनासी, अपना प्रभ भया सहाई।

ताप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुरपूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, आनंद बिनोद मंगल गुण गावहु, गुरु नानक पए दयाला, जय जयकार पए जग भीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

बिदारे, गुरपुरे की सरनी उभरे, कार्य सगल सवारे, हर जन सिमरिया नाम आधार, ताप उतारिया सतगुरु पूरै, अपनी कृपा धार रहाओ, सदा आनंद करह मेरे प्यारी, हर गोविंद गुर राखिया, वड्डी वडियाई नानक करते की, साच शब्द सत भाखिया,

गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जनते आपे राखे जमह कियो हटतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरिया भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोई करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याइए भाई मन तन शीतल होए चौथ महला पंजवा संतो हो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ अन दिन नानक नाम त्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखै ज्यों बारिक पित माता सूरत महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिख दारू नह पति आया उमराव हुआ गया तेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कतहु ना जाई गोविंद भेटे।

कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल सियो घर आए कर इस नाना रहाओ साची गुर वडियाई ताकी कीमत कहन ना जाई सिर शाह पातशाह गुर भेटत मन ओ माहा सगल पराशत लाथे मिल साध संगत कै साथी।

सोच हमारी कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याई है अन दिन सो कृत करिए रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ पा।

जी जंत सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पए सब पावन जन नानक सुख घर।

मुरारी रब अब चल नीओ सारी पाल तन तकिया तेरा तू भारो ठाकुर मेरा जिन जिन साध

धारी तां गत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओत सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक।

पार ब्रह्म निभाई पूरी, काई बात न रही आयूरी। गुर चरण लाए निस्तारी, हर हर नाम समारी। अपने दास का सदा रखवाला, कर कृपा अपने कर राखे। मात पिता ज्यों पाला रहाओ, वडभागी सतगुर पाया। जिन जम का पंथ मटाया,

साधा की तूरी नावे, अपना नाम आपे दिया, प्रभ करन हार रख लिया, हर दर्शन प्राण आधारा, एहो पूर्ण बिमल बिचारा, कर कृपा अंतर जामी, दास नानक सरन स्वामी, सोठ महला पंजवा, गुरपुरै चरणी लाया, हर

पूरी हेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म बितो कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद तारी विघ्न न लागे तिलका कोई कार्य सगल सवारी रहाउ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बाशत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस शतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो तेज अकेली नींद नह नैन है फिर परदेस सदायो।

सर्व गुणा सुखदायो मंदर चर के पंथ निहारों नैन नीर भर आयो हाँ हाँ पीत भयो है बीचो सुनत दे।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

स्तुति हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप भौजल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश

प्रभ स्वामी पात मत की नी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी वांछो संतां तूली चौठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी किरपा धारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को भयो सहाई सगल।

कुशल खेम प्रभ धारी, सही सलामत सब थोक उबारी, गुर का शब्द विचारी रहाओ, साध संग मल लाथी, पार ब्रह्म भयो साथी, नानक नाम त्याया, आद पुरख प्रभ पाया, चौठ महला पंजवा, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दइए वसाया, सुख सागर गुर पाया, ता सहसा

प्रभु की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवा आगे सुख गुर दिया पाशै कुशल खेम गुर किया सर्व निदान सुख पाया गुर अपना हृदय ते आया।

हर हर हर अरादु हर अराद सबु किश पाईए कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया

पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतोह सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहे।

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगत ताका मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

जो सिवरै तिसकी गत हुए, उधर है सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, एहो पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मटाया, सब पार ब्रह्म।

राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजी, सगले दुख मिटाया, रहाउ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी, सोठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे, त्यों हर जन हर गुण गावे, अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल, सदा सदा सुख पाइए, रहाउ ज्यों कामी काम लुभावे।

कै पाणै दास बाणी ब्रह्म बखाणै नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संसार।

तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा। जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी।

आओ कर साध संगत सिमर माधो होहे पतत पनीत काल बयाल ज्यों परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ।

अनपूरन सब मही अवर सगल मिथ्याए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जो गहारियो।

रहाउ अतल पयो त्रू जा कै सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता एह विद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधि।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाउ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

बिखियन को धावत केहे बिदरू कौ ताहि रहाउ वेद प्राण सिमरत के मत सुन निमख नाही ए बसावै पर धन पर दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावै मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना घट ही भीतर बस्त निरंजन ता को मर्म ना जाना जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जब की फांसी सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही एह सुख माया के उर्जे हो कहां गवार अज

नानक निज मत साधन को पाख्यो तो हे पुकार चौठ महला नवा यह जग मीत ना देखियो कोई।

पूत संबंधी सगरे तन सिंह लागे जब ही निरतन देखो नरको संग शाड सब भागे कहो कहा या मन बौरे को इन सिंह ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै भंजन जस ता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

आसा मनसा सगल त्यागै जागते रहे निरासा। काम क्रोध जे परसै नाहन तेहे घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जेहे नर को कीनी तेहे एहे जुगत पछानी। नानक ली

बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। एह बिद को व्यवहार बन्यो है जास्यो नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। सोठ माला पहला घर पहला अष्टपदिया चौतुकी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुगदा ना पढ़ो हर बिन होर ना।

बिंद सुख वास्ती नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी।

दुख सदा निवासी गुरमुख दे वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम ना पाई सुन संवाद महा परमार्थ तीन पवन पत नाम मस्त कलेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहाम कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ाम मान मुख झूठ लह पै मान आपे ज्ञान अगाम जिन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई अकथ का क्या कथिये भाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई होर क्या को करे चतराई एक भरम भला एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे कछ होए अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर।

प्यारे अमृत रसन हरे बूढ़े पारे पै बिना प्यारे तारे नजर करे पी तू है सलाहना प्यारे पी तेरी सलाह बिन बोहित पै डुबिय प्यारे कंदी पाए कहां रहाओ सालाही सालाहना प्यारे दूजा अवर ना कोई मेरे प्रभ सलाहन से भले प्यारे शब्द रते रंग होए किसकी संगत जे मिले प्यारे रस लै तत्व लोए पत परवाना साच का प्यारी नाम सच्चा निशान आया लिख लै जावना प्यारी हुक्मी हुक्म पछाण गुर बिन हुक्म ना बूझी है प्यारे साचे साचा तान हुक्मै अंदर निम्या प्यारी हुक्मै उधर मजार हुक्मै अंदर जम्या प्यारे ऊंदो सिर कै भार।

जाय। हुक्मे शब्द पछाणी है प्यारी, दरगहा पैंदा जाय। हुक्मे गणत गणाई है प्यारी, हुक्मे हों मैं दोई। हुक्मे पवै पवाई है प्यारी, अवगण मुठ्ठी रोई। हुक्म सियापै साहा का प्यारी, सच मिले वडियाई होय। आखण औखा आखी है प्यारी, क्यों सुनिए सच नाओ। जिन्नी सो सलाहया प्यारी, हों तिन बलिहारै जाओ। नाओ मिले संतोखियां प्यारी,

मन वस्या नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुआव गुरमुख हिरदय शब्द ना भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका अलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी

गुर कै शब्द पछाता अचिंत काम करह प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सुवारन हारा ऊना की रीस करे सोग गुच्चे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख भौंक मोए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़ै तै वाद बखाणै बिन हार पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूत है गुर सरनाई जिन हर

भाई मिल प्रीतम साच समाओ एत जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या नुह देसी जाय किड़ी पवंदी मोहायन भाई विख्यानो लो भाई नाम संभाल है सुख वसह भाई सदा सुख।

पंजवां घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिए क्यों देखिए पाई।

जपिया हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब किछ है पाई नौ निद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रित पाल दा पाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पीटिए पाई शब्द मलावण हार सच्चे चरण सरेवी है भाई भ्रम पौ होए नास मिल संत सभा मन मांजी है भाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता भाई कमल होए प्रगास गुरबचनी सुख उपजै भाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए भाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया भाई पेखै सुने हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म भाई इत दिन मरिए चूर करन करावन समर्थो भाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है भाई माया मोह विनाश तिस भावै ता मेल लय भाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है भाई हृदय होए परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ भाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया भाई एनस लागा पाओ रसना राम रवै सदा भाई

जिस पर तीत न आवे पाई सो जियड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब भाई हौ तिसकै बल जाओ। ओ निर्गुण आरे पालदा भाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास भाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा भेटी है भाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवी है भाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास ना विसरै भाई पेखों सदा हजूर। साधु संग मिलाया भाई सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया भाई से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया भाई भौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया भाई कीतोन अंग अपार। मन तन शीतल होया भाई भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति भाई जे किल बिख काटन हार। चोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारी तैं अपना नाम जपाया। बाहर काढ बिख पसरिया प्यारी माया मोह वधाया। जिसनों कीतो कर्म आप प्यारी

हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारी नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल पोंगम साधे पंच जना स्यों संग ना छुटकियो अधिक हम बुद्ध बादे।

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटके नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराई, मन की मैल ना उतरे एह बिद,

कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन।

हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सिरजन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हों गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हों मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफले हो सतगुर।

हरि अपना सोजन होवै परवान। गुरमुख मोए जीवन दे परवान है, मनमुख जन्म मराहे। नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है। सत संगत साधु लग

वे सही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखानो सुख अगला, जिन्ना अंतर नाम निवास। महला तीजा से सहन से सजना, जे गुरमुख मिल है सुपाई, सतगुर का पाना अन दिन कर है, से सच रहे समाई। दूजे पाए लगे सजन ना आखिए, जे अभमान कर है वेकार, मन मुख आप स्वार्थी, कार्ज ना सकह सवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना, कोई ना मेटन हार। पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै, आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया, माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगी है। फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे, से गुर समझाया।

अरे आपे से टसवार सिर तंदे लाए दा इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाए दा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा।

इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आय। नानक जो गुर सेव है अपना, फौतिन बलिहार जाओ। महला तीजा, मनमुख मन अजित है, दूजे लगे जाय। तिसनु सुख सुपने नहीं, दुखे दुख व्याय। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे, थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके, अट अट तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी, हमें परम पलाय। गुर प्रसादी भव पया, वडभाग वस्या मन आय। पै पय मन वस हुआ, हमें शब्द जलाय। सच रति से निर्मले, ज्योति ज्योत मलाय। सतगुर मिले ना पाया, नानक सुख समाय। पौड़ी।

आई। नानक गुरमुख मिला है बड़े आईया, जे आपे मेल मिलाए पौड़ी। हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी। जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी। जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी। सलोक महला तीजा, हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे। मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे, यों गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली। नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नदर करी। महला तीजा, जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान। नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया, एक सेवक गुर पास एक गुर कार लाइया। जिन्ना गुर प्यारा मन चेत तिन्ना पाओ गुरु देवाइया। गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया। गुर सतगुर

लगै पिछै सुख नहीं, मर जम्मै वार वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा होए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूणिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम त्याईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते क अरादया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरहै फिर ना मरहै, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसै पारस हुवै, सच रहै लिवलाए, जिस पूर्ब होवै लिखिया, किस सतगुर मिलै प्रभ आए, नानक गणतै सेवक ना मिलै, जिस बख्शे सो पवै थाए, महला तीजा।

आईंदी तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग सियो सब किल विख क्रिखा तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुर धरे विखा। सलोक महला तीजा गुर बिन ज्ञान ना होवई।

नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावह हर गुण क्षमता हर कीर्तन करह हर जस सुनह तिस कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देव हो दान दयाल हुए विच पाथर कृ

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान सलोक महला तीजा रे जन उथारै तप्यो सुत्या गई विहाय सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार ना कमाए जगत जलंदा डिठ मैं दूजे पाए नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याए।

करहु पापिष्ट हतियारी। ओहे कर कर फिर है कसुद मन ज्यों तरखट नारी। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी। हर मेलो हो सतगुरु दया कर।

नाम उपजे किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए महला चौथा सतगुर पुरख जे मारिया प्रम प्रमया कर छोड़ गया उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै पया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जां तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावे एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे अगों दे जन नानक आख सुनावे पौड़ी गुर सच्चे बता थे हो रखवाले गुर दित्ते पूर्ण होई आस गुर चरणी मन रत्ते गुर किरपाल बेअन अवगुण सब हते गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला तां की रजाए लेख्या पाए अब क्या की जय पांडे हुक्म होआ हासल तदे होए लिपड़िया हंड है जी कमांदे महला दूजा नक नथ खसम हाथ किरत धके दे जहां दाने तहां खाने नानका सच हे पौड़ी सबे गल्लां आप हाट बहालियो न आपे रचन रचाए आपे ही काल्यो न आपे जनते उपाए आप प्रित पाल्यो न दास रखे कंठ लाए नदर निहाल्यो न नानक भगतां सदा आनंद भाओ दूजा जाल्यो सलोक महला तीजा ए मन हर जी त्याए तू एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वड्याईया दे ना पछोताए हौ हर कै सद बलिहार ने जित सेवै सुख पाए नानक गुरमुख मिल रहे हम मैं शब्द जलाए महला तीजा आपे सेवा लाए आपे बख्श करे।

तेन निज कर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए,

गेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदा रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गाडले कंचन पारी बेद पड़े पड़ पंडित मुए।

ना जाई हमरा परम गया पहु भागा जब राम नाम चित लागा रहाऊ बाजीगर डंक बजाई।

तुम राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाव। तेरे गलह तौक पग बेरी, तुम कर कर मैया।

जित लाई तित लागी चेरी तैं समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जेह बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिए ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाउ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

सो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेतत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले हो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाई

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेत्या उभा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया।

अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही नेरे नाही दूर निज आत्मै रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदत जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा रहा। नरपत एक संगा सुन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नेरे, सहजे होए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने छूटन को जतन करो,

वेदन उपज खरी पई वाकाय औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन पीखन पावो मोख द्वारा ऐसा नाम रतन निर्मूलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राखिया रतन ना छपै छपाया।

नहीं कोई। तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रह लिवलाई, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुविधा।

गुरुपद साती जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दान संबंध सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर दरगाह का निशान, तनासरी महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काल नाही जोग नाही, नाही सत का टप, था नष्ट जग प्रित होए, डूबता इव जग, कल मह राम नाम सार, अखी ता मीट है नाक पकड़ है, ठगण को संसार रहाव, आंट सेती नाक पकड़ है, सूझते तिन लो, मगर पाचे कछ ना सूझे, एहो पदम अलो, खतरिया ता धर्म छोड़िया, मलेस भाख्या गही, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही, अष्ट साज साज प्राण सोदह, करहें वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही, कह नानक दास, तनासरी महला पह

तिस पावे सुवारती होए। हर चरण कमल मकरंद लोगत मनो, अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारिं को, होए जाते तेरे नाम वासा। तना श्री महला तीजा, कर दूजा चौपदे।

तद बल जाई। गुर कृपा ते हर मन वसाई, चेतनवंत हर नाम लिवलाई। गुर पूरे हर तन परगासिया।

सुख मानी अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जले अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई, किस सदा आनंद हुए दिन रात।

मैं मल धोए साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग किस सदा हरख ना।

बिन सतगुर सब मुई बिल लाए, अन दिन दा जह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

होए, शांत सिंगार रावे प्रभ सोए, हम मैं विच प्रभ कोई न पाए, मूलों पुला जन्म गवाए, गुरते शांत सहज सुख माणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिले प्रीतम सदा ते आए, साच

हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई, भगत करे जन वडियाई पाई, काच रते सुख सहज समाई।

मूड़ को सात तृष्णा यज्ञ बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर के भाणे चले ता आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए।

क्या पावा तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए बिन मन मुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे।

इस मन की सो जी पावे। मन मैं मत मैगल मिकदारा, गुरु अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साध जन कोई, अचार चरै ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवा।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काक्या तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काक्या तन हुनिया वै जाए रहाव मनमुख भूले सब मरह गवार भव जल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जोग मह अमृत।

सच लाए। तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही ना जाए। ते जन तन जिन एक नाम लिव लाए। गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार। हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए। कली काल विच गुरमुख पाए। रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे। हउमै विच सबकार कमाहे। गुर प्रसादी हउमै जाए। आपे बख्शे लए मलाए। भिख्या का तन बहुत अभमान। अहंकार डूबै न पावे मान। आप छोड़ सदा सुख होई। गुरमत सालाही सच सोई। आपे साजे करता सोए। तिस बिन दूजा अवर ना कोई। जिस सच लाए सोई लागे। नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा कर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम भीखक पे खारी तेरे। तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को। सदा रहो रंग राता। हम बलिहार है जा।

फूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

धारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हौ मैं मारी, हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरखे अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सुवारी, तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ भागी, अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी, हर कै नाम रत्ता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर

ज्ञान निक कीरे, तुम वड पुरख वडागी, तुम्हारी गत में तो कह ना सकह प्रभु, हम क्यों कर मिलह अपागी। हर प्रभु स्वामी कृपा तारो, हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभु, हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा, हर का संत सतगुरु सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी, जो जो कह सुने सो मुक्ता, हम तिस कह सद कुरबानी, हर के संत सुनो जस कानी, हर हर कथा सुनो एक निमख पल, सब के लिख पाप ले जानी रहाव, ऐसा संत साध जिन पाया, तेवड पुरख वडानी, तिनकी तूर मंग है प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी, हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जपे हो से त्रिपतानी, हर हर अमृत पी त्रिपता से, सब लाथी भूख पुखानी, जिनके वड्डे भाग वाडी विचे, तिन हर जपे हो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी, तनासरी महा

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर हुए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निम खाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सकह अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विशुट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपो तरह तराकी हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदाकी तुम वड पुरख वाडे अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाकी तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद उरतार बीचार मरार रमो रम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरे प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष हर संग हरि सतसंग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खत बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाप कीने जन नानक हर हृदय सद त्याव हो इउ हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावे है फिर जन्म ना आवे है हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आई बहु चिंत वसारी हर नाम उर तारी नानक हर पये है सखाई नासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौ जल पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट इव भण हर नाम मरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होए दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उद्यम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पात राख मेरे स्वामी हर आए परयो है सरन तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को बिरला पावे जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे हैं सुने हैं तेरा जस स्वामी हम तिनकै सद बलिहार है।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज बडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तीना सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना।

प्यारी सब तुझ त्यावह मेरे साह ज्यों पावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

मन गायो, भयो परगास सदा सुख मन मह, सतगुर पूरा पायो रहाओ, गुण निदान रिद भीतर वसिया, ता दुख भरम भउ भागा, भई प्राप्त।

सहज सुख सूबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधे गुर कीओ बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्ही त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां।

ਪਾਇਆ ਸੰਤ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਓਲਾ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪੂਜਨ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀਨੋ ਚੋਲਾ।

साकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे यह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्धव पसम संगीत अमृत संग न

त्या ही रहाओ। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिन सजाए परमाई अंध रूप रवे ओ सब मदे।

आनंद राज पाई मुक्ति निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत कृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अगाई तनासरी महला पंजवा जिन कीने वासे अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग इशनान ताप थान खंडे क्या एहो जंत विचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गा।

ऐसी ठगौरी पाए पलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हम बलिहारी सतगुरे अपने जिन एह चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया।

अल्प मात थोरी, तुम्हें आपन बिरद रखाव हो, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सोहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले तनास।

निर्मोल का हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रैन तनासरी महा।

एक है, मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रीन बांछ नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागो राम सिंह हेत सतगुर मेरा सदा सहाय दिन दुख।

ध्यान संयम किछ ना सूझै, ए जतन काट कल काल रहाओ, आद अंत दयाल पूरन, तिस बिना नहीं कोय। जन्म मरण निवार हर जप, सिमर स्वामी सोय, वेद सिमरत कथै शास्त्र, भगत करह विचार, मुक्त पाई साध संगत, दिन सजाए।

रहाउ। स्वर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए, जी उदारन सब कुल तारन हर हर नाम त्याय। नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना, कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना। तनासरी महला पंजवां, कर दूजा चौपदे

एकत्र तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह अनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक करा।

जाकी रास मिल साद संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

करहे करावह स्वामी सा मसलत प्रवान रहाव पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरण नानक दास हर हर संती ए बिद जाति तनासरी महला पंजवां सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर मह जलन ना दीने किने ना दुत्तर पाखे।

सारे नासन भाजन थाके घर मंगल वाजह नित वाजे अपने खसम नवाजे अस्थर रहो डोलो मत कबहु गुर कै बचन आधार जय जयकार सगल भू मंडल मुख

अराध हर के प्रीतम साध जा कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजे सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जा को कृपा कीजे तनासरी महला।

साध जन तन धन आपन थापियो हर जापना निमुख जापियो अर्थ द्रव देख कस संग नाही चलना जा कोरे कर्म भला तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारी रहाओ सास सास निमुख निमुख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोबिंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बसै जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पाहे ना साके जाले रहाओ निरतन कौ तन अंदले कौ टिक मात दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनासरी महला।

पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भ भूमवंत अभमानी राजा जाने सगल राज हमारा।

कर आई संत अनुग्रह भये मन निर्मल नानक हर गुण गाई तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस ताके जाका सतगुर पूरा।

जिस जन कह पाले सोई पूरा साहा, नाम व्यवहारा नानक अधारा, नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा, नेत्र पनीत भय दर्श पेखे, माता परों रवाल, रस रस गुण गा।

मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवां अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्ब सुख भोग रस देवै।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिध पार उतारी रहाओ। तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिन सना कतहु जात सत।

दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी साकत की आवरदा जाए बिरथारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गवारी रहाऊ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी एह बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख धन जी का पार ब्रह्म मोरै जाति रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहा।

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप। तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख।

सरोवर पागा, तेरा जन राम नाम रंग जागा, आलस सीज गया सब तन ते, प्रीतम स्यों मन लागा रहाउ, जह जह पेखो तह नारायण, सगल कटा महतागा, नाम उदक पीवत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा, तनासरी महला पंजवां, जन के पूर्ण होए काम, कली काल महा बिख्या मह, लज्जा राखी राम रहाउ, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, निकट न आवे जाम, मुक्त बैकुंठ साध की संगत, जन पायो हर का ताम, चरण कमल हर जन की थाती, कोट सूख विश्राम, गोविंद दामोदर सिमरों दिन रैन, नानक साध कुर्बान, तनासरी महला पंजवां, मांगो राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवह, सिमरो तुमरा नाम रहाउ, चरण तुम्हारे हृदय वास है, संतन का संग पाऊ, सोग अग्न मह मन ना व्यापै, आठ पहर गुण गावो, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मदहंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बहुड़ जन्म ना छापन, तनासरी महला पंजवां, मांगो राम ते सब थोक, मानुख को जाचत शर्म पाईऐ, प्रभ कै सिमरन मोख रहाउ, कोखे मुन जन सिमरत पुराना, वेद पकारह कोख, कृपा सिंध सेव सच पाईऐ, दोऐ सुहेले लोक, आन चार व्यवहार हैं जेते, बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण पै काटे, मिल साधु बिन से सोक, तनासरी महला पंजवा, तृष्णा बुझै हर कै नाम, महासंतोख होए गुर बचनी।

अर्ब मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। तनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यों लागो नेहो, नानक की बेनंती है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला नौवा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्बनवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। पोह पमद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवा, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह देवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवा, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेहे घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोगते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवा, अब मैं कौन उपाउ करूं, जे बिद मन को संसा चूकै, पहु निद पार परो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अदक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आमन जान रहे गुर राखे। सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे। त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हों मैं मार मिले भगत हारी। अनक जतन कर काल संताए, मरन लखाए मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप ना चीनस भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म तरनी तर टेक, जत सत संयम हृदय समाए। चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना तिस मरण ना आमन जान, ठाकुर मह दास दास मह सोई, जह देखा तह अवर ना कोई।
गुरमुख भगत सहज घर पाई बिन गुर भेटे मर आईए जाइए रहाउ सो गुर करो जे साच दरड़ावे कथ कथावे शब्द मलावे हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा तन

बहु भीख है कड़ भांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत प्रभ मन पति आया पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे बहुत सियाणप आवह जाहे नाम जपै पहु भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बन वासा परमत डोलत भये उदा।

आप पूरा नावणु गावे गावण हार शब्द सुहावणु सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मती फिर संग भावे सहज नावे देनी ता संगम सत सती आराध एक अंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एके वडे आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करह आवह बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला।

नानक साहिब अवर ना दूजा, नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार, अलख सिरंदिया जीओ एक साहिब दोए राह, बाद वधंदिया जीओ दोए राह चलाए हुक्म सबाए, जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली, बेखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे, हुक्म सवारन हारा नानक साहिब शब्द सियापे, साचा सिर जनहारा भगत सोह है दरबार, शब्द सोहाया जियो बोल है अमृत बाण रस।

निवारी तनासरी संत महला पहला फिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जीओ मस्तक लिखियड़ा लेख पुरब कमाया जीओ लेख ना मिटई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राते अवगुण बह बह रोसी तन जोबन आक की छाया गिरध भये दिन पुनिया नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुनिया बूढ़ी घर गालियो गुर कै पाए चलो साचा नाम त्याए पावह सुख महलो हर नाम त्याए तां सुख पाए पी अड़ै दिन चारे निज कर जाए बह सच पाए अन दिन नाल प्यारे बिन भगती घर वास न होवी सुनियो लोक सवाए नानक सरसी तां फिर पाए राती साचै नाए फिर तन भावै तां फिर भावै नारी जीओ रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जीओ गुर शब्द विचारी नाह प्यारी निव निव भगत करे माया मोह जलाए प्रीतम रस मह रंग करे प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल भई मन मारी नानक साच वसी सुहागण फिर स्यों प्रीत प्यारी फिर कर सोहै नार जे फिर भावे जियो झूठै वैण।

था घर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम त्याई जियो सतगुरु मिले सुपहाय सहज गुण गाइए जियो गुण गाए बिकसै सदा आनंदिन जा आप साचे भावे अहंकार हो मैं तजै माया सहज नाम समावे।

लगातार सर्व दुख पंजनो जियो दुख हरत करता सुख स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पाल एक माहे तराया पूर रहया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पै पंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा तारिया जियो मोहे निर्गुण नीच अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस तेरे सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमोलय जियो नित जपह तेरे दास पुरख अतोलय जियो संत रसन बूठा आप तूठा हर रसै सेई मातिया गुर चरण लागे महाभागे सदा अन दिन जागया सद सदा सिमरतभ्य स्वामी सास सास गुण बोलई बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोलई राग तलासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मर्म ना जाना संत संगत राम हृदय बसाई रहाउ हनुमान सर गरुड़ समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद अर सिमरत पुराना कमला पत कबला नहीं जाना कह कबीर सो पर मैं नाही पग लग राम रह सरनाही दिन ते पहर पहर ते घड़िया आप कटे तन सीजै काल एहेरी फिरे बदक ज्यो कहो कवन बिद कीजै सो दिन आवन लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो को है काका रहाउ जब लग जोत काया मह बरतै आपा पशु ना बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना

पूछे तप कर बहुर ऐबू, क्या मांगू किस थिर नाही। राम नाम रख मन माही रहाउ, सोभा राज बिभै बढ़ियाई। अंत न काहू संग सहाई, पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया। इनते कहो कमने सुख पाया, कहत कबीर अवर नहीं कामा। हमरे मन धन राम को नामा, राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई। राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई रहाउ। बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई, इन मैं कछ नाही तेरू काल अब दे आई। अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने, तेहू उतर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई। ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम ले ही। गुर प्रसाद जन कबीर राम कर सने, तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंडप छाई मार कंडे ते को अधकाई, जिन त्रिण तार मूंद बलाई। हमरु करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो। बिन सजाए झूठी देही रहाओ, मेरी मेरी कैरो करते। दुर्योधन से पाई बारह योजन, शत्र चले था देही गिरजन खाई। सर्ब सोइन की लंका होती, रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी, खिन मैं पई पराई। दुर्भाषा से

आए दास बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिट नाम सत्तर दोहे परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाछे बहुर ना आवन पावो अमृत बाणी घट ते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोहे है सीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेह तज दर्शन पावो इत कर भगत करह जो जन तिन भव सगल चुकाइए कहत नाम देव बाहर क्या परमोह एह संजम हर पाइए मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो करंक निस नाद बालहा।

आऊ ज्यो धरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल गुण चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती लाचना पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा, धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ, दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण सरन नामा बल तिहारी, तनासरी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर, मोर मन मान जन को पूर्ण दीजै, हो बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कमने अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण वाणी सुजस पूर राखो, मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो, हरसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाउ, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर सिंह, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पा

दारू कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मदे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राये गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरुण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ प्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठीत सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीत सरी दादी ले लंका गाड़ पपाड़ी ले रावण बाण साल बिसाल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी घर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाऊं कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती।

जैत श्री मोहल्ला चौथा हीरा लाल अमोलक है पारी गिन गाहक मीका काखा रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बकानो लाखा मेरा मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन घर रतन ना लाखा ते उजड़ भरम मोए गावारी माया पुआंग बिख चाखा हर हर साध मेलो जन नीके

जिहवा क्या गुण आख बखान है, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान दुपत हर राखा, जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना, हर कृपा धार दी।

आयो गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पतर पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखबा रहाउ तन तन वड भाग मिलो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल।

ताकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर शोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिउ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुरख।

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु हर हर नाम उमाहाराम हर हर नाम दयाल त्याहा हर कै रंग सदा गुण गाह हर हर हर जस घूमर पावहु मिल सत

अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम। जय श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै ताकी निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

को कहतो सब बाहर बाहर, को कहतो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बुझहियो, सर्व निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पहियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसहियो, जय श्री महल्ला पंजवां, तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेख प्रभ को नीरो, बेशमार बेअंत बड दाता, मन गिहीरो पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आसा मनसा पूरो जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख ना कबहू चूरों बुझ प्रभ को, जय श्री महल्ला।

चिंतव सारी भंग छोड़ियो है त्याग रहाव। जाओ देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परियो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग। तरियो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग। जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग। जय श्री महला पंजवा मन मह सतगुर ध्यान धरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। काल जाल अर महा जंजाला।

जिन रस रस हर गुण गाई, जय श्री महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे मह दीप रहाउ, सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम। चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन। मनह चिराव हो धूप, हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे। दृढ़ कर गए

या रस मह मगन होत कृपाति महाविख्याति तूर आयु सरन दीन दुख भंजन चितवं तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवा चातरक चितवत बरसत मेह कृपा सिंध करुणा प्रभ धारु हर प्रेम भगत को नेह रहाउ अनक सुख।

लाड़दास जाने अपने उदरे उदर नहारे। तब सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारी। जय श्री महला पंजवा। आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते। लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना। नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ। बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे। ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत। हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवा। हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे। पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा। निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही। आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी। सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक। सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो। जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ। समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो। संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो। रतन राम घट ही के भीतर ताको ज्ञान ना पायो। जन नानक भगवंत भजन।

हमको त्रास भयो उरे अंतर, शरण गही कृपा निध तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन, करत पाप अबहारा

दह दिस को उठताया घट ही पीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया नाहिन गुण नाहिन काश जप तप कौन कर्म अब की जय नानक हार परियो शरनागत अपै दान प्रभ दीजै जैत श्री महल।

को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक सरन परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया यार वे प्रयह बे सखियां मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हौ तिस आग्या मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किस निशी छंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हौ किद्दी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पता

महामंगल रहसिया फिर दयाल साधना वरंगिया वडभाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रय अंक अंक मलाई बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई जय श्री महा।

असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिया मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी घूलिया लूक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया धारो काड पव जल फेरिया सलोक नित ना पवे असंख गुण

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन तां कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ, संत साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाही कोय, थान थरंतर आप, जल थल पूर सोए, जल थल मैयल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बेअंत गुणता के क्या गनी, भज सरन स्वामी सुखागामी, तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवंत

अभिमान बूढ़े मरण चीत ना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे कुछ दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूत है जिथेया किरत कर्म ना मिटै नानक हर नाम धन नहीं खटिया उदम करह अनेक हर नाम ना गावही भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही पशु पंखी सैल तरवर गणक कशु ना आवे बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही बिनवंत नानक परम है परमाए खिन एक टिकन ना पावही जोबन गया बेतीत जर मल बैठिया कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया नह नैन दीसै बिन भजन ईसै छोड़ माया चालिया कहया ना मन है सिर खाक छन है जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल सरण आए नानक आया दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे भजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया।

आप अथापदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई, जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई, सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं, सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं, मुख तले पैरे उपरे बसंतो को हथड़ै थाए, नानक सो तनी क्यों वसारे हो उदर है जिस दै नाए, पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार, उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार, हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार, बिकम थानो जिन रखिया इस तिल ना विसार, प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जस है जन्म हार, सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है, खंडन कल कलेश है प्रभ सिमर नानक नह दूर नह, हब रंग मान है जिस संग तैस्यो लाई है नेहो, सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करनं माया अनेक उद्म है हर भगत भाव।

नाथ हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन इस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना जिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ, नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाउ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

बंदा वै त्यों संत जना हर प्रीत है। देख दर्श अगावे सलोक चितवंत चरण कमलं। सास सास आराधन है नह बिसरंत नाम अच्युत। नानक आस पूर्ण परमेश्वर है। सीतड़ा मन मजाहि पलक ना थीवे बाहरा। नानक आसड़ी निवाहि सदा पे खंदो सच धनी पौड़ी। आसावंती

एव सदा हजूरीय सलोक रसना उचरंत नाम सर्वण सुनंत शब्द अमृत है नानक तिन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान।

पिरहड़ी साच सिंहों पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मथा हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा चरण पनीत पवित्र चल है प्रभ पथा संतां संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी अदोत करनं हर रमणं संजोग।

परवान जित मलंदड़ो मापिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई बड़े भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप।

कही है तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर मस्त।

लाग संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी निरपो हुए रहे लिव एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहां ब्यापै जाको ओट तोहारी रहाउ बिन सिमरन जो जीवन बलना।

प्रभु को किस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर मीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विद कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद।

पाव है। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहूं ते छूट है। पवजल जगत तरायण, खोजत खोजत

सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन तिल वेख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे खोटे संग खरे गली सहल उठावत चाहे वे उहां ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो सरन परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा।

सरन परे दुख पंजन जाका बड परताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारी रहाउ खोजत खोजत बहु परकारी सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाइए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारी टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी

तरिया टोडी महला पंजवां हमारे एकै हरी हरी आन अवर सियान ना करी रहाऊ बड़े भाग गुरे अपना पायो गुरमुख।

सब किस किस के ग्रह में आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुख दे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर नीह ना होए रहाओ, हौ टुनेंदी दर्शन कारण, बीती बीती पेखा गुरमिल भरम गवाया ही, एह बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो, लेख लिखियो तुर माथे, एह बिद नानक हर नैण अलोए, टोडी महला पंजवा गर्भ गिहिलड़ो मूडड़ो ही ओरे।

राम नाम निर्मल है रीत रहाउ, प्राण आधार जीवन धन मोरै, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट घाट तोसा संग मोरै, मन अपने को मैं हर सखा कीत, संत प्रसाद भय मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया।

कारण बिसर नहीं निम कही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतरजामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट तारुह प्रभ मान आठ पहर रसना गुन गावे जस पूर अगावे समरथ कान तेरी शरण जीयन के दाते सदा सदा।

राम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेओ कोट सूर नानक परगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म

उत्तम फल वेद बखियान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल।

कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ, गुण गावत अच्युत अवनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे, अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजवा, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद हुए दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ, गुरपुरा भेटियो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गह काढ लियो जन अपना, बिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ना संकट द्वारा, नानक शरण गही।

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारा।

अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारी नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमहाई।

कहीं कब हूँ होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं इस दिन छुट्टी ना मन की काई कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरे खजूर काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव रामह जान कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भय राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई पंत नाम देव सो कृत समत भय गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए तीन संदे खेल आछे रहाओ कुंभार के घर हांडी आछे राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछे रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछे पैसर माते सींग गो देवल

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपै तिस देव जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो

जप मन राम नाम निस्तारा, कोटक तंत्र के पाप सब खोवे, हर भवजल पार उतारा रहाउ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निकट बसत कस नगर ना आवे, हर लादा गुर विचारा, हर आपे साहू सराफ रतन हीरा, हर आप किया पा सारा, नानक जिस कृपा करे, सो हर नाम विहाजे, सो साहु सच्चा बणजारा। बैराड़ी महला चौथा, जप मान हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याय सुखदा।

तिस जन को करहो नमस्कारा, हर कृपा ते पाइए हर जप, नानक नाम आधारा, बैराड़ी महला चौथा, जप मन हर हर नाम नित त्याई,

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोश पुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ तह दिल हेच ना दानी रहाओ जल पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखर बेअप्तम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

ता दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तौ दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत भीख्या पाए रहाऊ केसर कुसुम मृग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता ज्योत अनेही सर्वे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होई तेरे नाम निवे रहे लिव लाई नानक तिन दर पीछिया पाई पलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद इहो तन माया पाहया प्यारी लीतड़ा लभ रंगाई मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी क्यों धन सीजै।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगे दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे परदान वे लालो, काजियां बामना की गल थकी, अगद पड़े शैतान वे लालो, मुसलमानियां पढ़े कतीबा, कष्ट मह करह खुदाई वे लालो, जात सनाती होर हिंदवानियां, ए पी लेख लाए वे लालू।

नानक कर्म प्राप्त होई, जिन जपया तिस कहो बलिहार, तिस कै संग तरै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत।

घर तीजा करते कुदरती मुस्ताक दीन दुनिया एक तू ही सब खलक ही ते पाक रहाओ हिन माही थाप उथापदा आचर्य तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मह दीप खुद खसम खलक जहान अल्लाह।

यार बंदे जिस तेरा आधार गुनाह उसके सगले आपू तेरे जन देख है दीदार दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाम गुर मिल नानक बूझिया।

करी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाई है।

उस्तत है जो हर प्रभ भावै जो गुरमुख प्यारा सेम दे तिन हर फल पावै जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिना जी प्रभ नाले ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम संभाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को घुम जाया ओए आप छुटे परवार सिउं सब जगत छडाया गुर प्यारे हर सेविया गुर धन गुर तनो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौवां काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बेहात है फूटे घट ज्यो पानी रहाओ हर गुण काहे ना गावे मूर्ख अज्ञाना।

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

आई तलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद वेद कतेब इफतरा पाई दिल का फिकर ना जाए टुक दम करारी जो करहो हाजिर हजूर खुदाई बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए एह जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी ना ही रहाओ दरोग पड़ पड़ खुशी हुए बेखबर बाद बकाए हक सच खालक खलक मियानी स्याम मूरत नाए असमान मियानी लिहंग दरिया गुसल

नाम जप हो तब मथिया इन बिद अमृत पाव हो। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जेता सुई महला पहला जप तप का बंद भेड़ला।

लिखिया। अमृत हर का नाऊ देवै दिखिया, चल है सतगुर भाई पवह ना भीखिया। जां को महल हजूर दूजे निवै किस, दर दर वाणी नाही मूले पुछ तिस। छुट्टै तां कै बोल साहिब नदर जिस।

जोगनाथ ये सिद्ध संतर भवे है, जोगनाथ तीर्थ नहाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, सतगुर भेटै ता सहसा टूटै, धावत वर्ज रहाई है, निचार चरै सहज धुन लागै, कर ही परचा पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, नानक जीवत आमर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजहो सिंगी वाजे, तो निरभउ पद पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सूही महला पहला, कौन तराजी कवन तुला, तेरा कवन सराप बुलावा।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गाव हो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ, सत संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा धार मेलो सत संगत, हम तो वह पग जन के, राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के, हमरी जात पात गुर सतगुर, हम बेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के, सुई महला चौथा, हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलगा, पहु जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी, हर अस्तर सेव सुख समगा, मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे, सिर वेच लियो मुल महगा रहाउ, नरपत राजे रंग रस माण है, बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरमत मारी, सरनागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा, तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विट्टो सद घूमगा।

भरे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सर नवलाया सब लाथे किल विक पंग हर दीना दीन दयाल प्रभु सत संग।

हर हर करहे नित कपट कमावहे, हृदा शुद्ध ना हुई, अन दिन कर्म करहे बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई, ज्ञानी गुर बिन भगत ना हुई, कोरे रंग कदे ना चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा, मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना, दूजे पाए खुआई, बाहर भेख बहुत चतुरा।

गुण नाम दृढ़ाई, हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेले हर पाई, सूही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाई, गुरमुख हर हर नाम समाई, हर रंग राता मन रंग माणी, सदा आनंद रह दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ, हर रंग को लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मनमुख मुग्ध नर कोरा होई, जिसो लोचै रंग ना होवै कोई, नदर करे ता सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै, सूही महला चौथा, जिहवा हर रस रही अगाई, गुरमुख पीवै सहज समाई, हर रस जन चाखो हो जे भाई, तौ कत अनत साद लुभाई रहाउ, गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मरार, मनमुख हर रस चाखिया ना जाई, हौ मैं करै बहुती मिलै सजाई, नदर करे ता हर रस पावै, नानक हर रस

खत्री ब्राह्मण पेठ दे छोड़े हर नाम देव लिया मुख लाए जितने भगत हर सेवका मुख अठ सत तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए जन नानक तिन को अन दिन परसे जे कृपा करे हर राय सूही महला चौथा तिनी अंतर हर अराध्या जिनको तुर लिखिया लिखत लिलारा तिनकी बखीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख हो ऐसो उनकी रीस करे तिस हर

ही जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा चहो पीढ़ी आद जगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया न जाई हर तन संचिय भाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगती संग हर तन खटिए होरत है होरत उपाय हर तन कितै ना पाई हर रतन का वापारिया हर रतन धन विहाजे कच्चे के वापारिये वाक हर धन लया ना जाई हर धन रतन जवे।

का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही हलत पलत हर तनै की भगतां को मिली वडियाई हर धन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा इहो हर धन अग्नि तस्कर है पानी है जमदूत है किसे का गवाया ना जाई हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी जम जा गाती डंड ना लगाई साखती पाप करके बिखिया धन संचिया तिना एक विख नाल ना जाई हलते विच साकत दहेले पए हथों छुड़क गया अगे पलत साकत हर दरगाह ढोई ना पाई इस हर धन का साहु हर आप है संतो जिसनों दे सो हर धन लद चलाई इस

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए, सो हर गुणा रवे, सो भगत सो परवान। तिसकी महिमा क्या वर्णी है, जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान। रहाउ सो सतगुरु, सा सेवा सतगुरु की सफल है, जिसके पाइए परम निदान। जो दूजे पाए साकत कामना, अर्थ दुर्गंध सरेम दे, सो निह

समान जो बिन परतीती कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह

स्वामी मैं तुझे आगे अरदास मैं होर थाऊ नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजै हर की वडिआई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाए ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए सूही महला चौथा तू करता सब किसे आपे जान है क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किस सूझै जेहा को करे तेहा को पाई मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है बुरा भला तुद सब किस सूझै तुद भावै तिवें बला वह रहाओ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई इक ना सतगुर मेल सुख देव है इक मनमुख धंद पिटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना सिर लिखिया लेख जेही तू नदर करह तेहा को हुवै बिन नदरी नाही को भेख तेरी वडियाई तू है जान है सब तुदनो नित त्याई

मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाई ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग पाई।

जो हर भावे त्यो रखिए मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किछ कर हम साक है।

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता हुए। इकना सतगुर मेल तू बुझावे, एक मनमुख करह से रोवे। हर की वडिआई।

तू ही महला पंजवा कीता लोड़ है सो प्रभ होए तुझ बिन दूजा नाही कोई जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की राखो लाज तेरी सरन पूर्ण दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाउ जल थल महियल रहया परपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पतियारे कछु ना पाइए साच लगे ता हमें जाइए जिसनो लाए लए सो लागे ज्ञान रतन अंतर तिस जागे दुर्मत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दोए कर जोड़ करो अरदास तुद

आवै सा सुहागण अंक समावै गर्भ गहेली महल ना पावै फिर पछतावै जब रहण बेहावै कर्महीन मनमुख दुख पावै बिनो करी जे जाना दूर प्रभ अवनासी रहया भरपूर जन नानक गावै देख हदूर सूही महला पंजवा ग्रहवास गुर की ना हो कर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं कर की जोड़ी आस प्यासी फिर को लोड़ी कवन कहां गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत शिंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जां फिर घर आवे गुण कामन कर कंत रिजाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया सब ते ऊंचा मंदर मेरा सब का

जन नानक पिर धन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरयो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई प्रम प्रम आयो तो नदर ना पाई किन बिद ही अरो तीरै निमानो मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी धन कंता।

राती बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगली झागी, खिन रहन ना पावूं बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझे सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई।

पिंड सब थारी लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन कौ हम बारी रहाऊ प्रभ दाता मोहे दीन पेखारी।

तामह वासह भगत प्यारी सहज कथा प्रभ की अत मीठी विरले काहू नेत्र हो डीठी रहाउ कह गीत नाद अखारे संगा ऊहा संत करह हर रंगा कह मरन न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत वरखा गोज कथा एह गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जा कै दर्श पाप कोट उतारी भेट तसंग इहो भव जल तारी ओए साजन ओए मीत प्यारी जो हम कहो हर नाम चितारी रहाउ जा का शब्द सुनत सुख सारी जा की टहल जमदूत बदारी जा की तीरक इस मन सदारी।

काची देह मनुख अभमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरनाया सूही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त कौ जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किस कार जित छुटह परानी हर हर नाम जप अमृत बानी।

का भांडा, हाथ कुचील मिलै जम डांडा, काम क्रोध लोभ मोह बादा, महा गर्त मह निगरत जाता।

किल बिख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगै संतर वाला सुई महला पंजवां दर्शन।

साजन सुत बंधप भाई, जत कत पेखो हर संग सहाय, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाव, पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गर कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवां, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बनोद मंगल।

धूर बछाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करहु उत्साहा नानक दास हर सरन समाहा सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभु चरण कमल रिद माहि निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाए लियो जन अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए

आहार पूदाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे भज दिन नित रैणी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत भरन पोखण संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पापत जायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता

त्यो मूड़ा जित तू लाव है तित तित लगना जा तू देहे तेरा नाव जपना रहाउ हर के दास हर सेती राते राम रसायण अन दिन माते बाहा पकर प्रभ आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवा संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन कीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी।

अल्लाह पंजवां दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई राग सूही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाई कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराय रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाई पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताई नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाट पटंबर बिरथिया जिहे रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा पाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाऊ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल धूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निद पाई।

सुखी ताकै पाछै जाऊं छोड़ जाहे जो सगल कौ फिर लपटाऊं करहो कृपा करनापति तेरे हर गुण गाऊं नानक की प्रभ बेनती साध संग समाऊं राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया

रहाउ निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अनक कोठरिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु बिद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया।

आया, पुरुष है आया, कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरह पठाया रहाऊ महा दुत्तर माया, जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया, करो धर्म राया गृह अंध को पाया, पावक सगराया गही ओट सधाया, नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया। राग सूही महला पंजवा घर छीवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास।

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई जिसनो हो ही दयाला।

जित तुद त्याई निर्मल हुवै देहा मेरे राम हौं सो थान पालने आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाउ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारी एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरह बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे हुए।

सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर ध्याया।

करते का निमक सिमरत जित छूटै संतो हो सागर पार उतरी है। जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरियै रहाओ। कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल मह मैल प्रीजै। साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहो वरना को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह घट घट।

जल थल मही अल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम ता कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाई परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवां जब कसना सीओ तब क्या करता कमन

तेरे कीते कट कट तुही त्याई तेरी गत मित तू है जान है कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी कर्म

पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरह सो मर जाई दयाल हो वह जिस ऊपर करती।

चरण धूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कहो बल जाई। अमृत बचन हृदय उरतारी, तौ कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई। जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोई।

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंतै पावे ना तिस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतराई।

निद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गैले हो प्रीतम प्रबराया, भणत नानक सहो है पी हुसी, जय पावै प्यारा तैर वेसी, सूही महला पहला कर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जी हो, विण नावै भ्रम भुलिया।

ये भवै है बिन भागा धन नाही जियो अवगण मुठी जे फिर है बदक थाए ना पाहे जियो गुर राखे से उबरे शब्द रते।

ना बूझह आपना, से पशुआ से ढोर जियो, नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो, करता चेतना आवई, फिर लगे हैं दुख जियो, सुख दुख दाता मन वसै, तित तन कैसी भुख जियो, बाकी वाला

सच्चे की लिव उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अन्न को की जय मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया

देही होवग खाक पमन उड़ाई है, एहो कितै घर औताक महल ना पाई है, देहो दीवी अंध कोर कब महाई है, गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है, गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है, शब्द निवारी आग जोत दी पाई है, लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है, सदा रहे नेह काम जे गुरमत पाई है, रात देह हर नाम मन वसाई है, नानक मेल मलाए जे तुद पाई है, सूही महला पहला मनो ना नाम वसार अहन सत्याई है, ज्यो राखै कृपा धार तिवै सुख पाई है, मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी, रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी, रहाओ जह देखो तह नाल गुर देखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया, सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावै तिवै रजाए परम पौ भंजना, जन्मत

आस सतगुर मत दे राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद नामै ही ते सब किश होआ बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदलै जन्म गवाया कीन सनाही आपै गुरम

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे दिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा शब्द सुनाई, गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाय, मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छिडाए, सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नातै मल जाए, सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मन लगे ना लाए, सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुर ते पाए, तन मन सब किश हर तिस केरा, दुरमत कै

कोई अमृत भरे भरपूर है ओ ना तिल ना तमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवड भागी जे ओ ना मिल रहे अन बिन नाम लेन देसी रिजक संवाहे जिन उपाई मेदनी एको है दातार सच्चा आप धनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेल लए सो प्रभ सदा संभाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए।

साच रखा उर तार, मिलिया हुए न विछड़ै गुर कै हेत प्यार। फिर साला ही अपना गुर कै शब्द विचार, मिल प्रीतम सुख पाया सोभावंती नार। मनमुख मन न भिजई हत मैले चित कठोर, सप्पै दुध पी आईऐ अंदर विस निकोर। आप करे किसे आखियै आपे बख्शन हार, गुर शब्दी मैल उतरै ता सच बनया शिंगार। सच्चा साहु सच्चे बन जारी उतै कूड़े ना टिकन, उन्ना सच ना पावे दुख ही माही पचन। हम मैला जग फिरै

खुट है गुरमुख निब है नाल ए मन मूलों भुलिया जस है पत गवाई एहो जगत मोहे दूजे व्यापिया गुरमती सच त्याई हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन ना जाय गुर कै शब्द मन तन रपै।

पीता तुझह अराधि, दुख पी तुझह त्याई। जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच

सुतियां गुर सलाहिए उठदियां पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ तां के धुआं पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना कितै उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी क्यों गुर बिन जीवा माओ। मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहाओ। हर हर नाम रतन है गुर तुठा देवै माए। मैं धर सच्चे नाम की हर नाम रहा लिवलाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए। जिस परापत सोल है गुर चरणी लागै आए।

अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां घर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन डिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना टुटई।

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत ना पाईऐ। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै, सो मर जम्मै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो, गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वरै बिनसे सगल संताप जियो, तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्वमय तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवा।

मलाए जियो सोई दस पदेसड़ा मेरा मन अनक ना काहू जाए जियो एहो मन तै कू देवसा मैं मार्ग देहो बता।

की चित मह मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

प्रसाद हम कर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

सोहाया कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत तीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाए नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

मीता हो बलिहारी साजना मीता अवरीता गुणा का हुए वासला कड वासली जै जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जै सांझ करी जै गुणा केरी छोड़ अवगण चलिया पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिया जिथे जाए बहिया भला कहिया झोल अमृत पीजै गुणा का हुए वासुला कड वास लीजै आप करे किस आखिया होर करे ना कोई आखण ता को जाइए जे भूलड़ा होई जे होए भूला जाए।

ता गुण रवे मन भावे सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवे साच भावे साच की मत क्यों टले इशनान दान सुगियान मज्जन।

गुण रवै मन भावै सोई साहिब सो सलाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया मथ अमृत पिया एहो मन दिया गुर पह मोल कराया आपनड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचे लाया तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले हुए पराया साहिब सो सलाही है जिन जगत पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यों मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा फिर भावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म सकर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे ते सूझे गुर शब्दी सच जानिया साजन होने अपने क्यों पर घर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तट तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेखै तिसे भाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूझे अंध बूढ़ो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वस्से कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दस्से मन परदेसी जे थी है सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी भर आया जगत सबाया।

आप अपुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुले, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोह लड़ा हर त्याव हो, गुरमुख हर फल पाव हो, गुरमुख फल पाव हो हर नाम त्याव हो, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विट्टो हो, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जाप हो, सुख फल हर जन पाव हो, नानक कह सुनो जन पाई, सुख सोह लड़ा हर त्याव हो, सुन हर गुण पीने सहज सुपाय, गुरमत सहजे नाम त्याय, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पौ भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तिने अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाय, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुर ते उपजै शब्द विचारा, गुर

त्रिपट अगाही, हर गुण गाए सदा त्रिपतासी, फिर भूख न लागे आई, दह दिस पूज होए हर जन की, जो हर हर नाम त्याई, नानक

हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई। नानक कामण कंते रावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे कोई। हों मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे। शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साकी सुबा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना, राव रहे आ प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए, हर वर दे मलाए राम। हर कै रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए, सच समाए सच वरतै सब थाई। सच्चा शिंगार करे दिन राती, कामन सच समाई। हर सुख दाता।

गुरमति घट चानन होआ। प्रभ रब रहिया सब थाई राम, प्रभ रब रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हउमै मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करतै नाम नवै निध पाई।

शब्द रवहु, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावो नारी। अनदिन भगत करह गुर आगै, सा धन कंत प्यारी। गुर का शब्द वसिया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई। नानक तिन घर सद ही सोहिला, हर कर किरपा घर आई। भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम। गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल

जन निस्तरे घट घट शब्द समाणी तेरे गुण गाव है सहज समाव है शब्द मेल मलाई नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर

सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिन कर सद ही सोहला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

दुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावह रंग राते हर के भगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची भगत करह दर

सुख होई सूही महला तीजा। जे लोड़ है वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम। सदा हो वह सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम। हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई। सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल। गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा। जिने आपे आप उपाया नानक सदा पिर रावे अपना। जिन गुर चरणी चित लाया फिर पायड़ा बालड़िए। अनदिन सहजे माती राम गुरमती मन आनंद भया। तित तन मैल न राती राम तित तन मैल न राती। हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मलाए। अनदिन रावे हर प्रभ अपना। विचो हो आप गवाए गुरमत पाया सहज मलाया। अपने प्रीतम राती

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

ताटक ते सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजन हारो वडभागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे आनंद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म बिचारो घट घटे सबना।

हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद भया दिन राती।

परम गत पाई, पंच मिले सुहाया, गया क्रोध ममता तन नाठी, पाखंड भरम गवाया, हौ मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत पये शरीरा, गुर प्रसादी।

पत्ती वाचाई मन बजी वधाई, जब साजन सुने घर आई, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाई, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई।

भेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुरु पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिला हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बडभागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिवलाई मन चिंदिया फल।

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सुई संत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए। हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सहज सुपाए। अन दिन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुरपूरा पाईए, अन दिन नाम त्याए। सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए। निर्मल जल नाए मैल गवाए, भये पवित्र शरीरा। दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा। हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी। हर नाम प्यारे शब्द निस्तारी, अज्ञान अंधेर गवाया। ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कह सोई पर कीजै, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहण आया।

आवहु संत जन हो गुण गाव है गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाज्य है शब्द कनेरे राम शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई।

पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवे रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सहज समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लए मलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई

राम सतगुर पाए चलो हो जीवत्या इव मरिया राम जीवत्या मरिया भौजल तरिया गुरमुख नाम समावै पूरा पुरख पाया वड भागी सच नाम लिव लावै मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई सूही महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर संत जनों प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे हो मन तन देवा सतगुर मैं मेले प्रभ गुण तासे तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबासे वड भागी हर पाया जन नानक नाम वगासे गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवहो चिरी विछुनिया मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हाँ तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यो जल बिन मीन मराहा वड भागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा मन दह दिस चल चल भरमिया मन मुख परम भुलाया नित आसा मन चितवै मन तृष्णा भूख लगाया अनता धन धर दबिया फिर बिख भालन गया जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावै पच पच मोया गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया मेरा हिरदय सुध बुध विसर गई मन आसा चिंत वसारिया मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारिया वड भागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वारिया सूही संत महला चौथा मारे हिस वे जन हों मैं बिखिया जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया दे कंचन वे वन्निया इन हों मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब कालखा इन मनमुख मूड सजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे गुर शब्दी हों मैं छुटिया बस आने हो वे जन इस मन को मन बासे ज्यो नित पौंदिया दुख रहन वे विहानिया नित आसा आस करेंदिया गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौधिया जन नानक प्रभ देहु मती छड़ आसा नित सुख सौंदिया सा तन आसा चित करे राम राजिया।

अध्याय जन नानक हर प्रभु पाणिया राम राजया मिलिया सहज सुपाई इकत सीजै हर प्रभु राम राजया।

अत गुलाला शब्द चीन गुरमीठा मिथ्या मोहे मगनसी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन कृपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाईऐ भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख तज बहु माणा नानक दीन भगत।

ई गर्भ गवानो निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिया भौजल करिय जे पीवै कर्म लिखियासा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानो नानक शरण पया हर द्वार हो बल बल सद कुरबानो सुन बावरे मत जान प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिन्नी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई थियो नमाणा सद कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जियो बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आद जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम।

रहन आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी, संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो, गुण गोविंद गाओ नित नित,

मूख नासे रहस उपजै मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धार हो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याई सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर भरम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया सगल इच्छा पुनिया हो ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरी वछुनिया मन शांत आई वजी वधाई मनहु कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरडाया सदा भज जगदीसरै राग सूई संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रसमाना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक ठा

वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वड भागी पाई जित मिले प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किल विख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाइय प्रभु ते आई है बहुड़ जोन ना आई है गुर चरणी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम ते आई।

आया हर पूरन कृपा तारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो।

आया सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अविनाशी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी।

प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल थल मही अल पूरन।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिया है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम कटिया जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिया दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अवनासी।

मार्ग राम पवजल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाविकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वडियाई एहो तन हुए बडभागा राम एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणी प्रभ की सरणी करन कारण गोपाला सब किछ तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावे राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अति मीठी कथी अकथ कहानी।

काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरखा चुत अबनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवे काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हठ सत तीरथ पुन किरिया महानिर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

दान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइय अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिट

अवगण को नाच तारी, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काली, कट कट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हौ बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जे वड़े अवर ना कोई, आदि अंत मद प्रभ रविया, जल कल मही अल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पव जल

प्राण अधारु गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारु मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथे सहज सुख आनंद कनेरे हौ मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जियो तां चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौं तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी वड भागी हर हर गाया।

लाल हुआ रसना रति गुण सार, सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार। नानक करमी महल पाया फिर राखिया उरतार महला तीजा, मुंदे सूहा पर हर हो लाल करहो शिंगार। आवन जाना विसरै गुर शब्दी विचार, मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार। नानक सा धन रावी है रावे रावण हार, पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मन मुख मुग्ध रत्ता। हउ मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता, सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता। फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता, जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। सलोक महला तीजा सतियां ए ना आखियन जो मरिया लग जलन, नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन, सेवन साई अपना नित उठ संभालन। महला तीजा कंता नाल मेहदिया सेती अग जलाहे, जे जान है तेरे अपना ता तन दुख सहाहे। नानक कंत ना जाननी से क्यों अग जलाहे, भावै जीवो कै मरो दूर हो ही भज जाहे। पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करतै लिखिया, नामै जेवड़ होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया। नाम अखुट निदान है गुरमुख मन वसिया, कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया। सेवक भाए से जन मिले जिन हर जप जपिया,

0: हुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी
0: हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम पुरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिनकी ये तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी जिस बजाए सो बुझ सी सच्चिया
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन पिर मन मानिया तो बनिया शिंगार किया तो प्रवान है जा सहो धरे प्यार पाओ शिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत को तो नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार सीजै कंत ना आयो इवें भया विकार। महला तीजा तन पेरे एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन पिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग सियो हम मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर।

पुरख सजान गुर प्रसादी सेवी सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

तीर्थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नातिया दोए भा चढ़ी अस होर बाहर धोती तू मड़ी अंदर वेसने कोर साध भले अनातिया चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग तंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दह दिस इहो मन धामदा गुर ठाक रहाया नावैनू सब लोच दी गुरमति पाया तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

नानक नाम लाहा परवान, घर आए बजी वधाई, सच नाम की मिली वडियाई, महला पहला राती होवन कालिया, सोपे दा सेवन, देहु बग्गा तपै घना, कालिया काले वन, अंधे अकली बाहरे, मूर्ख अंध ज्ञान, नानक नदरी बाहरे, कबह ना पावह मान पौड़ी, काया कोटर चाहया, हर सच्चै आपे, एक दूजै भाए खुआयन, होमै विच व्यापे, यो मानस जन्म दलंब सा, मनमुख संतापे, जिस आप बुझाए सो बुझसे, जिस सतगुर थापे, सब जग

देवहु जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाउ ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबहु ना हारह ताल जो जानह पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदा।

सह की सार सुहागण जाने, तज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राखै, अवरा देख न सुने अपाखै, सो कत जाने पीर पराई, जां कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर

सोई, एक करी फुन रहन ना होई। इहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कहास रल गयो माटी। रहाव भाई बंद कटंब सहेरा, वे पी लागे काट सवेरा। घर की नार उरह तन लागी, ओह तो भूत भूत कर भागी। कह रवदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरों, बावल हुई सो सहो लोरों। तै सह मन मह किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस। तै साहिब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी। रहाव काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हों बिरह जाली। बिरह बहून कतह सुख पाए, जा हुए कृपाल का प्रभु मलाए। विद्गण खूही मुंद अके

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावां दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाउ, जो किस हुआ सब किस तुझते, तेरी सब असनाई। तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जा।

कहाउ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

अलख अपेव रहाव, माया मोहतर कटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुई,

दया पथ दाता, क्या एहे जंत विचारी, मुक्त बंद सब तुझ ते होए, ऐसा आख बखाणी, गुरमुख हो ऐसो मुक्त कही है, मनमुख बंद विचारी, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रह हर नाले, तिनकी गहन गत कही ना जाई, सच्चे आप सुवारी, परम पलाने से मनमुख कही है, ना उरवार ना पारी, जिसनो नदर करे सोई जन पाई, गुर का शब्द संभाली, हर जन माया माहे निस्तारी, नानक भाग हुए जिस मस्तक, काल है मार बदारी, बलावल महला तीजा, अतुल क्यों तोलिया जाए, दूजा हुए ता सोजी पाए, तिस ते दूजा नाही कोए, तिस दी कीमत किको होए, गुर प्रसाद वस्से मन आए, ताको जाने दुबदा जाए, रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए, आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने एको सोए, माया का रूप सब तिसते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिसे आए, सब सच दिखाले ता सच समाए, आपे लिव धात है आपे, आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे, बलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब मह एक समाना, सतगुर परचै हर नाम समाना, जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाई, अन दिन लागे सहज ध्याना रहाओ, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अब माना, जब अपनी जोत खिंच

हर हर नाम गोबिंदे वडभागी गुर सतगुर पाया गुण गाई परमानंदे रहाउ साकत मूड माया के बदक विच माया फिर है फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांदे यो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे से उदरे वडभागी सेव करंदे जिन हर जपया तिन फल।

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लाभहु। क्यों तरिय बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन चलारी माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिरे ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगले सिंगार करे नहीं पावे, जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पर्दा देख भई निहाल। जिन चाख्या तिस आया साद, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजवा, सर्ब कल्याण किए गुरुदेव। सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव। तरत पनीत भई गुण गाए, दुर्त गया हर नाम त्याए। रहाउ सबनी थाई रव्या आप, आद जगाद जाका वड प्रताप। गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे। पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाले, जित किते दिसह नाली। नानक दास खसम प्रतपाली, बिलावल महला पंजवा। सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण।

दुख हर सिमरत नसी जां कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मन तन आधार, विसरत नाम होत तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै घर सदा आनंद। राग बलावल

एक रूप सगलोपासारा आपे बंज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाई जत जत जाइए।

आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई चलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलावल महला पंजवा, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी। रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पौ सब अपना, कमन सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोभा मेरे आंगन। रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मन है उधारो, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लई मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहे आ प्रभ सब मह आपी, हर जप रसना दुख ना व्यापी। रहाउ तिखा भूख बहु तपत व्यापिया, शीतल भये हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मन

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई, कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण नान प्रभ तिन ही पाया, बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया, पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव, तन मन ताने अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया, महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया, वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया, बलावल महला पंजवां, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई, सुख सहज आनंद घणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी, अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव, सगल सरंजाम करे प्रभ आपी, भय मनोरथ सो प्रभ जापी, अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बेधाता, साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुर आणिया, बिलावल महला पंजवां, सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव, हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खवार साख नर थीवे, राम नाम हुआ रखवारा, चख मारो साकत बेचारा, निंदा कर कर पचह कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरी, कहो नानक जपह जन नाम, ताके निकट न आवे जाम, राग बलावल महला पंजवां, कर चौथा दुपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संयोग मिलो प्रभ अपने, पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो, कमल सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे, बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हिरदय त्याय, रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटे दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान रहाव, अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी, बिलावल महला पंजवां, शांत पाई गुर सत गुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव, ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे, आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सुवारी, बिलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मद माता, बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद, फाही फाता जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा बिखम सागर अत भारी, उधरहु साधु संगर वाला रहाव, प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल, भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल, बिलावल महला पंजवां, सगल आनंद किया परमेश्वर, अपना बिरद समारिया, साध जना हुए कृपाला, बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया, वड्डी आर जा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव, वण तिण त्रि भवन हरिया होए, सगले जी साधारिया, मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया, बिलावल महला पंजवां, जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत काटे सो काल रहाव, साध संग भजिए गोपाल, गुण गावत टूटे जम जाल, आपे सतगुर आपे प्रतपाल,
नानक जाचै साधरवाल बलावल महला पंजवा मन मैं सिंचहो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बलावल महला पंजवा रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज घर आया रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माही त्याई नानक गुरपुरे।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारी, सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शनहारी, रहाओ हम अवगन करहें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारी, तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिर्त कनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे, तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए, जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी, सब अवगुण हमा रहाओ। ज्यों तुम राख हो त्यों रहा अवर नहीं चारा, नी धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता, सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावै। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बुझै, बाद साध अहंकार मह मरना नहीं सूझै। सतगुर से वह अपना काहे फिर हो अभागे, देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किया श्रम करे ते बैर बरोधी, अंत काल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता, अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पये कीता। रहा ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

सर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाउ। जगत उधारन साध प्रभ तिन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभु संतन पगराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल, परम पै राखो मोहते काट हो जम जाल। बिनो करो करनापते पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। बलावल

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझे आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चेते आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया।

ना जापै हर हर हर हर जापी अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई महामंत्र नानक कथ है हर के गुण गाई। बलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपूरा जिस भेटिया ता कै सुख प्रवेश मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार मन ते कबहु ना विसर सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लाभ सेव निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबो ना विसरे प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाथे भय भरमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत त्रिपतासिया ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन। बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाउ संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सरब थाई कथा परातन इओ सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भवो नाही। बलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जा कै कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग, नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग। राग बलावल महला पंजवां, दुपदे घर पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अवर उपाव सब त्यागिया, दारू नाम लया,

प्रभ राखता भगतन की यान। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारविंद जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन कन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई तित चाख ना लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागे। आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे। बलावल महला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कै जो कह सो करना। पये प्रसन्न गोपाल राय पहो किश नहीं करना। दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे। जम कंकर नेड़ ना आवे गुर सिख प्यारे रहाओ। करन कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ। विश्राम पाए मिल साध संग ताते बहुड़ ना ताओ। बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ। नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे बाँचत फल पाओ। बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती हृदय कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई है सब भला मनाव है। साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन। जी सगल दयाल भये हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहे उ सर्बतर मैं प्रभ गुणी गहीर। नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल। राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास। पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ। जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद। निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव। जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ। नानक प्रभ शरणागति जात कत मेरे साथ।
ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ ਭਉ ਨਾਥਾ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਫਿਰਤੇ ਪਹਿਨਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੋਗ ਮਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਨਾ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣਤਾਸ ਰਹਾਉ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ

पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवां अपने बाल के आप रखियन पार

रोग मटाए जिवालियन जा कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल धारी।

दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन।

नमस्कार दंडौत बंदना अनकबार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरत।

करहो सोई भल हमरे पेख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मनह बसारन रहाओ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा

पूर रही दिन अर रात रहाउ, कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवा, राख लिए अपने जन आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाव गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाती,

अपर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण अधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो।

सुनो तुम भाई, जो कालर भीत गिरी रहाओ, जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, भलो देख दुख भरी है, आठ पहर चितवे नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरिए, निंदक प्रभु पलाया काल नेरह आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानक का राखा आ

करह करावह मुँह कर पावह। पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ, काच बेहाजन कंचन छाडन। बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा। बिखिया मह लपटाए जरे, अंधकूप मह परे ओ प्राणी। परम गबार मोह बंद परे, कहो नानक प्रभ होत दयारा। गुर भेटै काढ़ै बाहां परे, बिलावल महला पंजवां। मन तन रसना हर कीना, भय आनंदा मिटे अंदेसे। सर्ब सुख मोको गुर दीना रहाउ, ज्ञानपते सब भई सिया।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहूं ना मान्यो मन शीना बलावल महला पंजवां गुरपुरै मेरी राख लई अमर

का जपया जाप। कहा करे कोई बेचारा प्रभु मेरे का बड परताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही। ताकि शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही। बिलावल महला पंजवा सदा सदा जपिए प्रभु नाम। जरा मरा कछ दुख न व्यापै आगे दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परिये नित सरनी गुर ते पाइए एहो निदान। जन्म मरण की कटिए फांसी साची दरगाह का निशान। जो तुम करहो सोई पल मानो मन ते छूटे सगल गुमान। कहो नानक ताकी शरण आई जहां का किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा मन तन अंतर प्रभ आही। हर गुण गावत परपकार नेतर तिस रसना का मूल किछ नाही रहाउ। कुल समूह उदरे खिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही। संत सेवक भगत हर ताके नानक मन लागा है ताही। बला

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाओ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन स गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराध नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दुए थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्ज हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम।

मूला लल स्यो प्रीत बनी रहाओ, तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, दिन सरैन मन माही बस्त है, तू कर कृपा प्रभे अपनी, बल बल जाओ श्याम सुंदर को, कथ कथा जा की बात सुनी, जन नानक दासन दास कहियत है, मोहे करहो कृपा ठाकुरे अपनी, बलावन महला पंजवा, हर के चरण जप जाओ कुर्बान, गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका हृदय धर मन ध्यान रहाओ, सिमर सिमर सिमर सुख दाता, जाका किया सगल जहान, रसना रवहु एक नारायण, साची दरगाह पावु मान, साधु संग परापत जाको, तिन ही पाया एहो निदान, गावो गुण कीर्तन नित स्वामी, कर कृपा नानक।

तरन रहाउ। विश्वंबर पूर्ण सुखदाता सगल समगरी पोखण परन, थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण। जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन, आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं दरन। राग बलावल महला पंजवा दुपदे घर अठवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा। ईक है निर्गुण ऊग है सरगुण, केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव। नगर मह आप बाहर खुन आपन, प्रभ मेरे को सगल बसेरा। आपे ही राजन आपे ही राया, कह कह ठाकुर कह कह चेरा। का कौ दराओ का स्यो बल बंचा, जह जह पेखो तह तह नेरा। साध मूत गुर पेट्यो नानक, मिल सागर बूंद नहीं अनेरा। बलावल महला पंजवा, तुम समरथा कारण करन, ताकन तात गोबिंद गुर मेरे। मोहे अपराती सरन चरन रहाओ, जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो। ठौर नाही कछ ढीठ मुकरन, बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो। कोट अगा तेरो नाम हरन, हमरो सहाओ सदा सद भूलन। तुमरो बिरद पतत उधरन, करना मैं कृपाल कृपा निध। जीवन पद नानक हर दर्शन, बलावल महला पंजवा। ऐसी कृपा मोहे करो, संत है चरण हमारो माथा। नैन दर्स तन तूर पर हो रहाओ, गुर को शब्द मेरे ही अरे बासे। हर नामा मन संग करो, तस्कर पंच नवार हो ठाकुर। सगलो परमा होम जरो, जो तुम करो सोई पल मान। पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभ तुम ही दाते। संत संग ले मोहे उदरो, बलावल महला पंजवा। ऐसी दीख्या जन स्यों मंगा, तुमरो

0: प्रभ मेरे।
1: पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा,
0: पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जारो, जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारू, जन नानक प्यास।

कुशल पया गुर पूरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी मया रहाउ मन तन रव रहे हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अभनासी नानक उचरै हर की जया बलावल महला पंजवां बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताजे अब मान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए, कहो नानक गुर पूरा पेटे हो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुर पूरे तब

जाई दर्शन पावत ही राच्यो हो नाथ ही सहाई संतना अब चरण गहे रहाऊ आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे उलझियो अलम करंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे अनते टूटी है रिखते छूटी है मन हर रस कूटी है।

जोग जग निःफल ते मानो जो प्रभ जस बिसरावे मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावे कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे बलावल महला नौवां जा मैं भजन राम को नाही तेह नर जन्म अकारथ खोया यह राखो मन माही रहाउ तीर्थ करे व्रत फुन राखे नह मनुआ बस जाको निःफल धर्म ताहे तुम मानु साच कहत मैं जाको।

जिन शब्द लिवलाई मन मुखो मैं पत गवाई आपे करतै भगत कराई गुरमुख आपे दे वडे आई रैन अंधारी निर्मल जोत नाम बिना झूठे कुचल कशोत वेद पकारै भगत सरोत सुन सुन मन वेखै जोत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ामं गुरमुख शांत उत्तम करामं मनमुख जोनी दुख सहामं।

को दूजा देख कहो पावे मन सोए, नानक कह अवर नहीं कोई। बलावल महला पहला, मन का कहया मनसा करे, इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते त्रिपत ना आवे, त्रिपत मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना,

आप ना बूझे लोक बुझावे मन का अंधा अंध कमावे दर कर महल ठौर कैसे पावे हर जियो सेविया अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी

गुरमुख माथ माथ तत कढ़ैया लाल जवे हर नाम परगासिया भांडै भाऊ पवै तिथिया दासन दास दास हो रही है जो जन राम भगत निज पैया मन बुद्ध अर्प धरो गुर आगै गुर प्रसादी मैं कथ कथैया मन मुख माया मोहे व्यापे इहो मन तृष्णा जलत खैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया इहो मन नाचै सत गुर आगै अनाद शब्द धुन तूर बजैया हर हर उस्तत करै दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर धार चोऐ अत निर्मल जिन पिया तिन्ही सुख लहिया मन हट कर्म करै अभमानी ज्यो बालक बालू कर उसरैया आवै लहर समुंद सागर की खिन मह भिन भिन टह पैया हर सर सागर हर है आपे एहो जग है सब खेल खलैया ज्यो जल तरंग जल जलह समाव है नानक आपे आप रमैया बलावल महला चौथा सतगुर परचै मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन भस्म दरड़ैया अमर पिंड भये साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया मेरे मन साध संगत मिल रहीया कृपा करहु मधुसूदन माधव मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहाऊ तजै गिरहस्थ भया बनवासी एक खिन मनुआ टिकै ना टकैया धावत धाए तदे घर आवै हर हर साधु शरण पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करै नहीं बूझै गुर कै शब्द निरास सुख लहिया उपजी तर्क दिगंबर होवा मन दह दिस चल चल गमन करैया पर पवन करै बूझै नहीं कृष्णा मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिख है बहु तेरे मन मांग है रिद सिद्ध चेटक चिटकैया तृप्त संतोख मन शांत ना आवै मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेतज उत्पुज सब वर्ण रूप जी जंत उपैया साधु सरन परै सो उबरै खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन औजात रविदास चमयार चमैया जो जो मिलै साधु जन संगत तन तना जात सैन मिलिया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई भगत वचन अंगीकार करैया नानक सरन परे जग जीवन हर हर कृपा धार रखैया बलावर महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन पीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया राम गुर मोहन मोहे मन लैया हौ आकल बिकल भई गुर देखे हौ लोट पोट होए पैया रहाओ हौ निरखत फिरौ सब देश दसंतर मैं प्रव देखन को बहुत मन चैया मन तन काट देऊ गुर आगै जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया कोई आन संदेसा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काट देऊ चरना तल जो हर प्रभ मेले मेल मलैया चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है गुण कामन कर हर प्रभ लहिया भगत वचल ओवा को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे पैया थिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पैया हर हर हार कंठ है बनिया
मन मोती चूर वड गहन गहनैया हर हर शरदा सेज वछाई प्रभ छोड़ न सकै बहुत मन पैया कह प्रभ अवर अवर किश कीजै सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया कियो शिंगार मिलन कै ताई प्रभ लियो सुहागन।

नानक हर गुर सरण समैया। बलावल महला चौथा। मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया। गुर देखे शरदा मन पूरी, ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया। मिल मिन सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया, रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन। मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया, वैदिक नाटक देख पुलानी। मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया, हौं खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम। ज्यों बिन अमलै अमली मर गैया, जिनको प्यास हुए प्रभ केरी। तिन अवर ना पावै बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मलावै। हौं तिस विटहो बल बल घुम गैया, अनेक जन्म के विछड़े जन मेले। जां सत सत सत गुर सरन पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकुर। महल ना पावै मन मुख परमैया, गुर गुर करत सरन जे आवै। प्रभ आए मिलै खिन ढील ना पैया, कर कर किरिया चार वधाए। मन पाखंड कर्म कपट लो भैया, बेसवा कह कर बेटा जन्मया। पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पसाई। आपे कोल कोल अंग लैया।

सतगुर प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभु की, उपमा जात ना कही, ताजे आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल आपार, हौ जाऊं सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे, ताजे आन कतह ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन, चढ़ नाव संत उदार, तै तरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत, तज गए पाप विकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखिए बिस्माद, चख अनद पूर्ण साध, नह डोलिए इत ऊत, प्रभ बसे हर हर चीत। तिन नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास, ते जम ना पेख नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर सरन सूर गोपाल, प्रभ भगत वस दयाल, हर निगम लह ना पेव, नित करह मुन जन सेव। दुख दीन दर्द निवार, जां की महा बिखड़ी कार, तां की मित न जाने कोए, जल थल मही अल सोए। कर बंदना लख बार, थक परियो प्रभ दरबार, प्रभ करहु साधु तूर, नानक मन सापूर। बलाव महला पंजवां, प्रभ जन्म मरण निवार, हार परियो द्वार, गह चरण साधु संग, मन मिष्ट हर हर रंग। कर दया ले हो नर लाए, नानका नाम त्याई,

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो बात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिखई।

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उधार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवा जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट दे।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम डर बांधे आवन जाने, क्या लै आवहै क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पा खंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाउ, रात दिनंत किए पौ पाऊ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर न दूजा सिर जनहारा, तृतीया

कीमत पावे, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा।

मूक शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अरादे पौन पानी अग्नि बिसराउ तही निरंजन साचो नाउ किसमें मनुआ रहया लिवलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ।

का फलोहार किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़े लालच लपटे लपटाए, छूटे गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुद्रा मन अवतूता, ऐन सजागह कबह ना सूता, जागत जाग रह।

आई, आप उपाय सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

वार वार दिन सरहण तिवें संसार आवा गौण किया करतार निश्चल साच रहया कल धार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सो जी पाए परपंच चूकै सच समाए जाकै।

कह काय परमे भूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे ता दर सूझै एक

कह कोई। साहिब की सेवक रहे सरनाई, आपे बख्शे दे वड्याई, किसते ऊपर नाही कोई। कौन डरे, डर किसका हो।

रह मुग्ध गुवार नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला शंत दखनी एक ओंकार।

लिव लाए हर सिउ रही गोयल, सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़, गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया। तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक।

हर हर लिव लागे राम। अंतर कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम। जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड भागे राम। हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम। गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम। अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम। जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ भाई राम। अखी प्रेम कसाईया जो बिलक मसाई राम। गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम। जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिव लाई राम। हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम। तन तन गुरु साबास है जिन हो मैं मारी राम। जिन वड भागियां वड भाग है हर हर पुर तारी राम। जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइये गोविंद पाइये देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ तह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाहा साहा अटल गणया पूर्ण संजोगो राम सुख है समूह भया गया विजोगो राम मिल संत आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योती पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अनदिन वजह वाजे अहंग मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखणा हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अनदिन वजह वाजे दिन सरैण अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे पंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखे सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसे भावह एक निमख पलक ना त्यागी है गह कंठ लाइय नह लज्जाइय चरण राज मन पागी है भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पाव है बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मरण मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक।

वासे आओ सखी असी तिरका मंगल गावे तजमान सखी तजमान सखी माते अपने प्रीतम भाव है तजमान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावां।

रजा वो कह मुख हो नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तू ही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भणा मेरी सेज सोही देख मोही सगला

यो सुख सागर प्रभ भेटे है, नानक सुखी होत एहो जीओ संत। सुख सागर प्रभ पाई है, जब होवे भागो राम। मानन मान वंजाई है, हर चरनी लागो राम। छोड़ सियान पचातुरी, दुर्मत बुद्ध त्यागो राम। नानक पवो सरनाई राम राय, फिर हुए सुहागो राम। सो प्रभ ताज कत लागी है, जिस बिन मर जाइए राम। लाज ना आवे ज्ञान मती, दुर्जन बिरमाइए राम। पतत पावन प्रभ त्याग करे, कहो कत ठहराइए राम। नानक भगत भाओ कर दयाल की, जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उचरह, बल गईये दोहचारन रसना राम। प्रभ भगत बछल न सेवही, काया काक ग्रसना राम। भ्रम मोही दुख ना जानही, कोट जोनी बसना राम। नानक बिन हर अवर जे चाहना, बिस्ता क्रिम पसमा राम। लाए बिरो भगवंत संगे, होए मिल बैरागण राम। चंदन चीर सुगंध रसा, हौ मैं बिख त्यागण राम। ईत ऊत नह डोलिए, हर सेवा जागण राम। नानक जिन प्रभ पाया अपना, सा अटल सुहागण राम। बलावल महला पंजवा, हर खोज हो वडभागी हो। मिल साधु संगे राम, गुण गोविंद।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रस पिन्याड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ पेखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस फीके राम नानक जल जल है।

हर त्यावुहु भगतोहु दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मनमुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावनी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है बिचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक स्यों दे बलाई जन्म मरण दुख कटिया सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

सच्ची भगत जिस दे हौ मैं मार मलायन गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उना अंदर हिरदै पाई निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन उना पराया भला ना सुखाई क्या हुआ किसे ही की चख मारी जा सच्चे स्यों बन आई जे गल करते पावे सा नित नित चढ़े सवाई सब चख चख मरे लुकाई श्लोक महला तीजा त्रिग एह आसा दूजे भाव की जो मोहे माया चित लाई हर सुख पल्लर त्यागया नाम विसार दुख पाई मनमुख ज्ञानी अंदले जन्म मरह फिर आवे जाई कारज सिद्ध न होनी अंत गया पछताई जिस कर्म होए तिस सतगुर मिले सो हर हर ना

निदान सुखदाता तेरे मन वसै हमें जाए अभमान नानक नदरी पाई है अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किच हर करावे सो ओहे करह सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले।

हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान ना लागे, दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगे, करमी सतगुर भेटीऐ तां सच नाम लिव लागे, नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाम मन पाया, गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार, भंत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवे हो हउमै मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे, सिर तंदा नित मार, दूजै पाए सूते कबहु ना जागे।

हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर तहट ना वथ ना विसाहु भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास लए वे

आप तरिया कुल उदरे धन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्ण महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए।

हुए कहना किशु ना जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मन है समाणी, अंतर निर्मल नाव। अन दिन जागे कदे ना सोवे, सहजे अमृत पियाओ। मीठा बोले अमृत बाणी, अन दिन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सुंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी, सो गुर हर तन हर पासो देवाया। जे किसै किहो दिस आवे, ता कोई किहो मंग ले। अकै कोई किहो देवाए, इहो हर तन जोर कीता। किसै नाल ना जाए बंडाया, जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए। तिस हर तन की वंड हाथ आवे, जिसनो करतै तुर लिख पाया। इस हर धन का कोई शरीक नाही, किसै कै खत नाही। किसै कै सीव बन्ने रोल नाही, जे को हर धन की बखीली करे, तिसका मुँह।

मनमुख जन्म गवाया झूठै लालच पूर नानक बख्श मलायन सच्चा शब्द हदूर महला तीजा।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र।

आप न बौरा राम कियो बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक जाने। अब है ना माता सो कभो ना माता, कह कबीर रामे रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाई है, चुन खाइए कंदा। अजो बिकार ना छोड़ई पापी मन मंदा, क्यों छूटो कैसे तरो। पवजल निद भारी राख राख मेरे बीठला, जन सरन तुम्हारी रहाओ। बिखै बिखै की बासना तजी नह जाई, अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया, किश किया ना नीका। एहो जियरा निर्मूल को कौडी लग मीका, कहो कबीर मेरे मा।

राम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो।

त्रिग तन त्रिग धन त्रिग एह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फन्नी जिस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचन्नी क्या खेती क्या लेवा दे परपंच झूठ गमाना कह कबीर ते अंत बिगूते आया काल निदाना बलावल शरीर सरोवर पीतरे आछै कमल अनूप परम ज्योत प्रखोतम जा कै रेख न रूप रे मन हर पज भ्रम तजहो जग जीवन राम रहाउ आवत कछु न दिसै नह दिसै जात जह उपजै बिनसै तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज बीचार कह कबीर सेवा करहो मन मंज मरार बलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ काशी ते धुन उपजै धुन काशी जाई काशी फूटी पंडता धुन कहां समाई त्रिकुटी संध मैं पेखिया घट हूं घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी।

होए बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानी है जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रहे।

विकार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह सरन कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाउ एक बूंद जल कारनी चात्रिक दुख पावे।

माया मोह कटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इनकै किस हाथ नहीं कहां करह एह बपड़े इनका वाहया काश ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारै तेरा कटंब सब छड़ाई जे किस आस अवर करह परमित्री मत तू जानह तेरा कितै काम आई ए आस परमित्री भाव दूजा है खिनमह झूठ बिनस सब जाई।

ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जोखिन मैं किलविक सब करे बनासा, जे हर त्याग अवर की आस कीजै, ता हर निफल सब काल गवासा, मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा, मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, ता आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढ़ासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए, अवरा पह कह मन लाज मरासा, जो संसार के कटम मित्र भाई दीसह मन मेरे, ते सब अपने स्वाई मलासा, जित दिन उनका सुआओ होए ना आवै, तित दिन नेड़े को ना टुकासा, मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा, किसका प्रवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा, हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा, जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो।

तात शीतल माने अपना, जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई, सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना, रहाउ जा मह सब निदान, सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रतना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, इनके चरण मलहो हर दसना, शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओहो उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, किस जन की वड़ियाई हर आप वधाई, ओहो कटै ना किसे की कटाई, एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना, जन नानक कहो हर दान एक दीजै, नित बस हृदय हरी मोहे चरना, गोंड महला चौथा, जितने शाह पातशाह अमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

जो हर जन नीच जात सेवकान गोंड महला चौथा हर अंतर जामी सब तह वरतै जिहा हर कराए तिहा को करै सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुदनो सब दू रख लई मेरे मन हर जप हर नित पड़ै हर बिन को मार जवाल ना साकै ता मेरे मन कायत कड़ै रहाउ हर परपंच किया सब करतै विच आपे अपनी जोत तरही है हर एक को बोले हर एक बुलावे गुर पूरे हर एक दिखइए हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासो मन क्या चोरई है निह कपट सेवा कीजे हर केरी ता मेरे मन सर्व सुख पइए जिस दे वास सब किश सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा तिहई है जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा त्याए तू तुदले छड़ै गोंड महला चौथा।

मेरा वीर मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत तीर जन नानक की हर आस पुजाव हो हर दर्शन शांत शरीर शका एक राग गोंड महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहाऊ सुनतो करता पेखत करता अदृष्टो करता दृष्टो करता ओपत करता परलो करता व्यापत करता लिपतो करता भक्तो करता बूजत करता आवत करता जात पी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुर प्रसाद नानक समदृष्टा गोंड महला पंजवा फाक्यो मीन कपक की न्याई तू उर्ज रहे संभाए ले पग धार है सास लेख लै तो उदर है हर गुण गाए ले मन समझ छोड़ आवाए ले।

ज्यो पंखी एकत्र हुए फिर बिछरै, थिर संगत हर हर त्याए ले। जैसे मीन रसन साध बिनसेउ, ओहो मूठो मूड लभाए ले। तू हुआ पंच वास वैरी कै, छूट है पर सरनाए ले। ओहो कृपाल दीन दुख भंजन।

राग गोंड महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी मह जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याए आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कह परे पंडार सगल कटां देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमख जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा।

बिहाय। काटे अवकट जात कतह सहाय रहाऊ। रंक राहो जाके एक समान, कीत हस्त सगल पुराण। बियो पूछना मसलत तरे, जो किछ करे सो आपे करे। जा कायंत न जान सकोए, आपे आप निरंजन सोई। आप अकार आप निरंकार, काट काट काट सब काट आधार। नाम रंग भगत भय लाल, जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए। गोंड महला पंजवां, जां कै संग इहो मन निर्मल। जां कै संग हर हर सिमरन। जां कै संग किल बिख होहे नास। जां कै संग हृदय परगास। से संतन हर के मेरे मीत, केवल नाम गाइए जां कै नीत रहाऊ। जां कै मंत्र हर हर मन वसै, जां कै उपदेश परम पौ नसै। जां कै कीर्त निर्मल सार, जां की रेन बांछै संसार। कोट पतत जां कै संग उधार, एक निरंकार जां कै नाम आधार। सर्ब जिया का जानै पेओ, कृपा निदान निरंजन देव। पार ब्रह्म जब पए कृपाल, तब पेटे गुर साध दयाल। दिन रैन नानक नाम ते आय, सुख सहज आनंद हर नाय। गोंड महला पंजवां, गुर की मूरत मन मह ध्यान।

मत को भरम भुले संसार, गुर बिन कोए न उतरस पार। रहाओ भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भगति लाया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई। गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार मह भया प्रगास। जिनकी आसो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग। कहो नानक प्रभ एह जनाई, बिन गुर मुक्त न पाई है पाई। गोंड महला।

गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाय, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव। गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है वड भागी,

जप नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करहे सलाम लूट ले साकत पत खो है सात जना पग मल मल धो है पंच पूत जने एक माई उत्पुज खेल कर जगत व्याई तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेतन रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा काय अंतर जामी।

नानक निस्तरी है गोंड महला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस तन ते मार होए रही है सगल की रीना घट घट रमैया सब महचीना इन बिद रमहु गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को एह सुआओ ताज अभमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर स्यो मन रंग जिन तू किया तिस को जान आगे दरगाह पावे मान मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन मंगेर वाला हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जीवै प्रभ नाम गोंड महला पंजवा धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग गुरसो प्रसन्न भये वड भाग आठ पहर गाइय गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ हर गुण रमत भये आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मलाए कर्म धर्म एह तत् ज्ञान साध संग जपिए।

कृपा तार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवां कर कृपा सुख अनद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटे बलाई दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिये संसार वडभागी पाइये पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटह उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

देव गुण महला पंजवा संत का लिया तरत बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसे दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोई जो निंदा तिसका पतन होए जिस को राखे सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिसकी रास नानक को उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गुण महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहे निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्श।

साधसांग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जाको राखे रखनहार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ में अग्न ना जो है।

सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां।

जागे चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रौ सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गोंड अष्टपदियां।

उमराओ पतियाई दुष्ट अहंकारी मार पचाई निंदक कै मुख कीनो रोग जय जय कार करे सब लोग संतन कै मन महा आनंद संत जप है गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पय सगल थान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाहे पार ब्रह्म गुर बे परवाही सगल पै मिटे जाकी सरन निंदक मार पाए सब धर्म।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पैज सुवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिया कहिया। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिया। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़ है बेकारा। बिन बोले क्या कर

विचारा कहो कबीर शूशा घट बोले भरिया हुए सो कबो ना डोले गोंड नरु मरै नर कामना आवे पशु मरै दस काज सुआरे अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाउ हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले आनंद मूल सदा पुरखोत्तम काट बिन सह गगन ना जाए ले मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ पांच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे हर मह तन है तन मह हर है सर्व निरंतर सोए रे कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे या मूर्त कै हौ बलिहारे आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ रे महावत तुझ डारो काट इसे तराव हो काल हो साट हस्त न तोरे तरे ध्यान वाके हृदय बसे भगवान क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार है तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद मह जन की जिंद गोंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे ओ ना एहु जोगी ना अवतूता ना इस माए ना काहू पूता या मंदर मह कौन बसाई ता का अंत न को उपाई रहाउ ना एहु गिरही ना ओदासी ना एहु राज ना भीख मगासी ना इस पिंड न रख तू राती ना एहु ब्राह्मण ना एहु खाती ना एहु तपा कहावै सेख ना एहु जीवै ना मरता देख इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस गोंड टूटे तागे निखुट्टी पान द्वार ऊपर चिलका वह कान कूच बिचारे पुए फाल या मुंडिया सिर चढ़ गोकाल एहो मुंडिया सगलो द्रब खोई आवत जात नाक सर होई रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वाका मन राता लड़की लड़कन खैबो नाही मुंडिया अन दिन तापे जाहि एक दोए मंदर एक दोए बाट हमको साथर उनको खाट मूंड पलोस कमर बध पोथी हमको चाबन उनको रोटी मुंडिया मुंडिया हुए एक ए मुंडिया बूढ़त की टेक सुन अंधली लोई बेपीर इन मुंडियन भज सरन कबीर गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारे का हुए बनास आगे नरक इहा भोग बलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाउ सुहागन गल सो है हार संत को बिख बिगसै संसार कर शिंगार बह पखियारी
संत की ठिठकी प्यै बेचारी, संत भाग ओ पाछै परे, गुर प्रसादी मारू डरे, साकत की ओह पिंड परायण, हमको दृष्ट परे त्रिख डायण, हम तिस काबो जानिया पेव, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव। कहो कबीर अब बाहर परी, संसार कै अंचल लरी, गोंड ग्रह सोभा जा करे नाही, आवत पहिया खुदे जाए, वाके अंतर नहीं संतोख, बिन सोहागन लागे दोख, धन सोहागन महापवीत, तपे तपीसर डोले चीत, रहाओ सोहागन किरपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती, साधु कै ठाडी दरबार, सरन तेरी मोको निस्तार, सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर सनक सनहरी, जौ लग प्राण तऊ लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे, सोहागन भवन त्रै लिया, दस अठ प्राण तीर्थ रस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, बड़े भूपत राजे है शेदे, सोहागन उरवार ना पार, पांच नारद कै संग बिदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड, जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल ना टीकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे, जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रह मह खेते रहाऊ, जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए, सूत बिना कैसे मणि परोइए, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अवगत जाइए, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपरे तोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार, जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दोहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना, गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे, कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार रहाऊ, नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ ना पतिए परचे साचे, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल, बजारी सो जो बजारह सोदे, पांच पलीतह कौ पर बोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री कै जतन नाम उच्चरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरुदेव अत रूप विचखन, गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव, धन अनाद भूखे कवल टहकेव, धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी, आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम अन कै साद रहाउ, जपिए नाम जपिए अन्न, अम्बे कै संग नीका वन, अन्न बाहर जो नर होवे, तीन भवन में अपनी खोवे, छोड़े अन्न करहे पाखंड, ना सुहागन ना ओहे रंड, जग में भक्ते दूधा तारी, गुप्ती खावे है बटका सारी, अन्न बिना ना हुए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल, कहो कबीर हम ऐसे जानिया, तन अनाद ठाकुर मन मानिया, राग गोंड बाणी नाम देव जी की कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, असमेध जगने तुला पुरख दाने, पराग इशनाने, तौ ना पुज है हर कीर्त नामा, अपने राम है भाजरे मन आलसिया रहाउ, गया पिंड भरता बनारस अस बसता, मुख बेद चतर पढ़ता, सगल कर्म अशता,
गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस भाव सिंदं गोंड नाद भ्रमे जैसे मिर्गाई प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत ना फेरो रहाओ ज्यों मीना हिरे पशुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखी हिरे पर नारी कौडा डारते हिरे जुआरी जह जह देखो तह तह रामा हर के चरण

तरपे न जानो बाप बीतला बाह दे रहाउ नर ते सुर होए जात निमख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुर्ग को जीत्यो सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेके नैक टकावो मोहे तेरे नाम अविलंब बहुत जाने उदरे नामे की निज मत ए गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलप है ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाउ जैसे गाय का बादशाह सूतला थन चोखता माखन कूटला नाम देहो नारायण पाया गुर भेटत अलख लखाया जैसे बिखै हित पर नारी ऐसे नामे प्रीत मरारी जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देओ जियो की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंदले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमह रहाउ हर हर नाक्ष हरे प्राण अजय मलकियो बैकुंठ थान सुआ पढ़ावत गनका तरी सो हर नैनहु की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल घातनी कपतह भरी सिमरन द्रोपत सुत उदरी गौतम सती सिला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली कौ दिया प्रणव नाम ऐसो हरी जास जपत पै अपदा टरी गोंड पैरो भूत सीतला तावे खर बाहन उहशार उडावे हौ तौ एक रमैया लै हो आन देव बदलावन दै हो रहाउ शिव शिव करते जो नर त्यावे बर्द चढ़े डौरू डमकावे महामाई की पूजा करे नर सह नार हुए अवतरे तू कहियत ही आद पुहानी मुक्त की बरिया कहां छपानी।

नामे सोई सेविया जह देहुरा नाम सीत। राग गुण बाणी रविदास जियो की कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राण जप मुकंद मस्तक निशान। सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल धन लादी। एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार। मेटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जोग तार। उपजियो ज्ञान हुआ परगास कर कृपा लीने कीट दास। कहो रविदास अब तृष्णा चूकी जप मुकंद सेवा ताहू की। गोंड जे हो अठसठ तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै। जे हो कूप तटा देवावै करे निंद सब बिरथा जावै। साधका निंदक कैसे तरे सर पर जानहु नरक ही परे रहाओ। जे हो ग्रहण करे कुल खेत अर्पे नार शिंगार समेत। सगली सिमरत सर्वनी सुने करे निंद कवने नहीं गुने। जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना सांडे करे निंद बहु जोनी हांडे। निंदा कहां करो संसारा निंदक का प्रगट पाहारा। निंदक सोद साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सधारिया। जोड़ राम कली महला पहला कर पहला चौपदे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा किरता कोई पढ़े पुराना। कोई नाम जपे जपमाली लागे तिसे त्याना। कब ही किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गति हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी। कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ। कबहू जी अड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए पयाले। लोभी जी अड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले। मरन लखाए मंडल मह आए जीवन साजे माई। एक चले हम देख है स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का पाई ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देव है अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला सर्ब ज्योत तेरी पसर रही। जह जह देखा तह नरहरी जीवन तलब नवार स्वामी। अंध कूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर घट पीतर बसिया बाहर काहे नाही। तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर आपे सर्ब रहया भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तह रहया समाए। अंतर सहसा बाहर माया नैनी लागस बाणी। प्रणवत नानक दासन दासा परता पेहगा प्राणी। राम कली महला पहला जित दर वस है कवन दर कही है। दरा पीतर दर कवन लह जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह किन बिद सागर तरिये। जीवत्या नह मरिये रहाओ दुख दरवाजा रोह रखवाला। आस अंदेसा दोए पट जड़ी माया जल खाई पानी घर बांधिया। सत कै आसन पुरख रह किंते नामा अंत ना जानिया। तुम सर नाही अवर हरे ऊंचा नहीं कहना मन मह रहना।
आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही, क्यों कर एक कह, आसा भीतर रह नरासा, तो नानक एक मिले, इन बिद सागर तरी है, जीवत्या इयों मरी है, रहाओ दूजा, राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी, बाजै लोक सुने, पत झोड़ी मंगन कै ताई, भीख्या नाम पड़े, बाबा गोरख जागै, गोरख सो जिन गोए उठाली, करते बार ना लागै रहाउ, पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी, एते गुण विसरे, सिद्ध साधक अर जोगी जंगम, पीर पुरुष बहु तेरे, जे तिन मिला ता कीरत आखा, ता मन सेव करे, कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह, ऐसे भगत मिल है जन नानक, तिन जम क्या करे, राम कली महला पहला, सुनमा शिंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नह डोले, ऐसी जुगत जोग कौ पाले, आप तरह सगले कुल तारे, सो अवतूत ऐसी मत पावे, अहंस सुन समाद समावे, रहाउ, भिख्या पाए भगत पै चले, हुए सो तृप्त संतोख अमुले।

हृदय प्रगास हुए लिव लागे, गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ। हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया, त्रिन ओलै लाख छपाया। मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई। दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाई। राम जन गुरमत राम बुलाई, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाय रहाउ। जे वड पाग हो वह मुख मस्तक, हर राम जना पेट हाय। दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाय। हर के लोग राम जन नीके, पाग हीन ना सुखाए। ज्यों ज्यों राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक, जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए। से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज ना पाए। दया दया कर राख हो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए। हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिनि ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे। राम मोको हर जन मेल मन भावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा। मिल संत जना मुख पावे रहाउ, हर के लोग राम जाने उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे। हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेव है, सेवड भागी, हृदय मन

कात बाद सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदिया ढिल ना लाइए हर जन अमृत कुंट सरनी के वड भागी तित नवाइए राम मोको हर जन कार लाइए हौ पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल तूर मुख लाइए रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगुर मेल मलाई है सतगुर जेवड अवर ना कोई मिल सतगुर पुरख त्याई है सतगुर सरन परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाई है एक अपने सवाई आए बह गुर आगे जो बगल समाद लगाई है बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाई है नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराई है राम कली महला चौथा सतगुर दया करहो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लग है गुर चरनी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर ना कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ मेरे एक थिन प्राण ना रह बिन प्रीतम बिन देखे मरह मेरी माया तन तन वड भाग गुर सरणी आई हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर ना कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जो पाया नाम हीन फिर है से न कटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम त्याया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरै दिया हर अमृत नाम सुमारी राम गुर हर हर नाम कंठ तारी गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारी रहाओ कोट कोट ते तीस त्यावह ताका अंत ना पावह पारी हृदय काम कामनी मांगह हृद मांगह हाथ पसारी हर जासु जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारी जे वड भाग होवे ता जपिए हर पहो जल पार उतारी हर जन निकट निकट हर जन है हर राख है कंठ जन तारी नानक पिता माता है हर प्रभु हम बारक हर प्रित पारी राग राम कली महला पंजवां घर पहला

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवै, मोहे अंध लपटाना।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलहो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

पूर पंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इहो जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत न आवस दूजी बाता सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहू जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाहीं।

हीरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया नानक कहन ना जाए राम।

ने अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचे आनी घुंघर साजा राम को निरतकारी पेखै पेखनहार दयाला जेता साज सिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पांच तत कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातों पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सब हो नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक लचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

पाछै पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवां, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल कर हो बिचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सदहाई, परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया।

जानन हारे कहो बल जाओ। कहो नानक गुर परम चकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया।

ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै दीठा रहाउ निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर भये निह काम तन मन सी तल अग्न निवारी अनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर किरपा ते नीच निवाजिया फूल कुवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक।

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हों सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महमा जा की गहर गंभीर

अवतार, जिसे सहाई होए भगवान, अनक जतन ओआ कै सरंजाम रहाउ, करता राखे कीता कौन, कीरी जीतो सगला भवन, बेअंत महिमा ता की केतक वर्ण, बल बल जाइए ता के चरण, तिन्ही किया जप तप ध्यान,

परगास गहर गंभीर अपार गुणतास जी जंत सगले प्रतपाल नानक संत है देख निहाल राम कली महला पंजवा तेरे काज ना ग्रह राजमाल तेरे काज ना बिखे जंजाल इष्ट मीत जान सब छलै

लाज रहै, हर सिमरत जम कछ ना कह रहाउ। बिन हर सगल नरारत काम, सोइना रूपा माटी दाम। गुर का शब्द जाप मन सुखा, इहां उहां तेरो उजल मुखा। कर कर

प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरुष का संग पया रहाउ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई भला जह राखै सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम अठ सठ तीरथ जह साध पग तरह तह बैकुंठ जह नाम उच्चरह सर्व आनंद जब दर्शन पाईए राम गुणा नित नित हर गाईए आपे घट घट रहे आप्या।

बीज मंत्र हर कीर्तन गाऊ, आगे मिली न थावे थाऊ, गुरपूरे की चरनी लाग, जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वासते, पौ जल पार परला रहाऊ, नाम निदान त्याए मन अटल, ताशू तह माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा हुए निर्मल जियो, सोदत सोदत सोद बीचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापै हर कै रंग, छोड़ सियाणप बहु चतराई, मन बिन हर नावै जाए ना काई, दया तारी गोविंद गुसाई।

सुख घर में आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया, नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान।

सो परवान जिस हृदय वसाई, नानक ते जन उत्तम पाई। राम कली महला पंजवां, गौ कर पकरी ना आई हाथ। प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई। तब ओह चरणी आए पई, सुन संतो हो निर्मल विचार। राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटत उधार। रहाउ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गमान। जब उसको कोई मन पर हरे।

सो भूखा रह, इस संग राचै सो कछु न लह। इस त्याग सत संगत करै, वड भागी नानक ओह तरै। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्ब मह पेख। पूर्ण पूर रहया प्रभ

पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यो प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपटयो भ्रम गिरह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पंजवां रैन दिनस जपो हर नाउ आगे दरगाह पावो थाउ सदा आनंद न होवी सोग कबू न व्यापै हो मैं रोग खोजो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा परम गत पावह।

सगल अपावना चालह संग भव जल तरिये प्रभ कै रंग देही धोए न उतरे मैल हों मैं व्यापै दुबदा फैल हर हर औखद जो जन खाए ता का रोग सगल मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कभो न बिसर गोपाल तेरे दास की होवा तूर नानक की प्रभ शरदा पूर राम कली मोहल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारन प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सहराचै हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपूरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवै अखुट भंडार, नानक भगत सो है।

का पूता हर भगता हवालै होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कछ टोट ना आवे अंत

करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख ना

नहीं जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गत आप जाने, सुन सुन अवर बखाने रहाउ, संकरा नहीं जाने भेव, खोज तहारे देव, देवियां नहीं जाने मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप बिछोड़ै आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

राम कली महला पंजवा राखन हार दयाल कोट भव खंडे निमुख ख्याल सगल अराध जंत मिलिय प्रभ गुर मिल मंत जीयन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाउ ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमान।

मत सार जित हर सिमरीजै कर कृपा जिसे आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाओ नानक जपया गुरु।

निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिस की गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दलाब दे सवार जाहे ना दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लय छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होहे दोए सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिन सह सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरे पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनी जय।

तिस का सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए, काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे, मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाउ, जो जो करे सोई मान लेहु, बिन माने रल हो वह छेह, किसका पाणा।

जिस चित आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा पूजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गणन ना जाई कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महला पंजवां, मन माहि जाप भगवंत।

पूजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै। नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जाका प्रताप। राम कले महला पंजवां, बिरथा परवासा लोक। ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस। अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे। कार्य तेरा होवै पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे। रहाओ तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन। मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव। सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान। सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै। आनंदेन त्याय नाम, सफल नाम।

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ भंजन रिद माहे अराध।

होए प्रभ दयाल, गुर का दर्शन देख निहाल, परा पूर्वला कर्म बन आया, हर के गुण नित रसना गाया, हर के संत सदा परवान, संत जना मस्तक निशान, दास की ऋण पाए जे कोए, नानक किस की परम गत होए, राम कले महला पंजवां, दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय धर ध्यान, तूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस भेट मिटे अभमान, पार ब्रह्म सब नदरी आवे, कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ, गुर की कीर्त जपिए हर नाओ, गुर की भगत सदा गुण गाओ, गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान, गुर बचनी समसर सुख दुख, कदे न व्यापे तृष्णा भूख, मन संतोख शब्द गुर राजे, जप गोविंद पढ़दे सब काजे, गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुरदाता दयाल बख्शिंद, गुर चरणी जा का मन लागा, नानक दास तिस पूर्ण भागा, राम कले महला पंजवां, इस परवासै बिच रह भवन, मूण मुगद तेरा संगी कवन, राम संगी तिस गत नहीं जानै, पंच बटवारे से मीत कर मानै, सो कर सेव जित उदरह मीत, गुण गोविंद रवियह दिन राती, साध संग कर मन की प्रीत रहाओ, जन्म बिहानो अहंकार अरवाद, तृप्त न आवे बिखिया साध, परमत परमत महा दुख पाया, तरी न जाई दुत्तर माया, काम न आवे सो कार कमावे, आप बीज आपे ही खावे, राखन को दूसर नहीं कोए, तो निस्तरै जो कृपा होए, पतत पुनीत प्रभ तेरो नाम, अपने दास को की जय दान, कर कृपा प्रभ गत कर मेरी, शरण गही नानक प्रभ तेरी, राम कले महला पंजवां, एह लोके सुख पाया, नहीं भेटत धर्म राया, हर दरगाह सो बावंत, हुन गर्भ नाहीं बस।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध प्राणी जन का सफल दर्श डी।

बूटा सूके काष्ट हरे चलूल ऊंचे थल फूले कमल अनूप अग्न नवारी सत गुरुदेव सेव के अपनी लायो सेव किरत घणा का करे उदार प्रभ मेरा है सदा दयार संत जना का सदा सहाई चरण कमल नानक सरनाई राम कली महला पंजवा पंच सिंह राखे प्रभ मार दस बिघियाड़ी।

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए तृण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप प्रग

सिंध समायो कट के माही, करनहार को किस अचरज नाही। जो छूटो तो जाए पयाल, जो काढ़ो तो नदर निहाल। पाप पुन हमरे बस नाही, रसक रसक नानक गुण गाए। राम कली महला पंजवां।

चिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावह साच तना रहाउ, ऊणे काज न होवत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, करे बिकार जियरे कै ताई, गाफल संग न तसुआ जाई, तरत तो हो अनक शाल जाने,

पार ब्रह्म जब पये दयाल यह मन हुआ सादरवाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचे साच समाई राम कली महला पंजवा राजा राम की सरनाए निरपो पये गोबिंद गुण गावत साध संग दुख जाए रहाओ जा कै राम।

जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो हो साध प्यारे, मुख उज्जल साचे दरबारे, आनंद करहो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरोह पार। राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागे, माटी को जल दह दिस त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जीव आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै।

गर्भ जोन में किरत पया पूर्व कमाणे छोडह नाही जमदूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा कृष्ण ना बूझे बहुत हया असाध रोग उपजया संत दुखन देह बलासी महा खया जिन्ह नवाजे तिन्ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्म मया राम कली महला पंजवा ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई जाका सिमरन बिरथा न जाई रहाओ दर्शन पेखत हुए निहाल जाकी तू

बिन से अभमान, एक त्याई है साध कै संग, पाप बनासे नाम कै रंग, गुर परमेश्वर सगल निवास, काट काट रव रहे गुणतास, दर्स दे तारू प्रभ्यास, नित नानक चितवे सच अरदास, राग राम कली महला पंजवां, कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गावहु राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाईऐ, आवागौण मिटै मेरे मीत, रहाओ गुण गावत होवत परगास, चरण कमल मह होए निवास, संत संगत मह होए उदार, नानक भवजन उतरस पार, राम कली महला पंजवा, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जप सदा सुहेले, सगल मनासे रोग कूरा रहाओ, एक अरादो साचा सोए, जाकी सरन सदा सुख होए।

सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओट ले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्बाना रहाउ बड़ भागी ते जन कौ जानहु जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सदावै अजामल कौ अंत काल में नारायण सुध आई जां गत को जोगी सर्वांशत सो गत शिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कश विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम।

अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ। मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह

असुर मह निमक एक उर धारै जम को त्रास मिटै नानक तेहे अपनो जन्म सवारै राम कली महला नौवां प्राणी नारायण सुध लेह छिन छिन औध घटै निसबासुर बिरथा जात है दे रहाउ तरनापो बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहु नहीं समझै कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तै क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन, होए है अंत सहाई। राम कली मोहल्ला पहला अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तपत रहै। सा धरती सो पौन चुलारे, जुग जी खेले थाम कैसे। जीवन तलब निवार होए परवाना, करे तिंगाना कल लखन विचार रहाउ। कितै देश न आया सुनिए, तीर्थ पास न बैठा। दाता दान करे तह नाही, महल उसार न बैठा। जे को सत करे सो शीपै, तप कर तप न होई। जे को नाउ लहे बदनाम, कल के लखन एई। जिस सकदारी तिसह खुआरी, चाकर के हे डरना। जा सिकदारै पवै जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। आख गुणा कल आई है।

ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावहो धोवहो तिलक चढ़ावहो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बखराण पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाओ भया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावह आसन त्याग काहे सच पावह ममता मोह कामन हितकारी ना अवतूती ना संसारी जोगी बैस रहो दुबदा दुख भागै धर कर मांगत लाज ना लागै रहाउ गावह गीत ना चीनह आप ज्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए भिख्या सहज विचारी खाए पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जमदंड फूटे खापर भीख न पाए बंधन बांधिया आवे जाए बिंद न राख है जति कहावह माई मांगत त्रै लभावह निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला।

कैसे उतर सपारी, मुंदरा पटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार है चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाउ, माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर भेटै मेल मलाए, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तित राता मेरा मन पीरा, हौ मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का पौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी, पर कर जाए ना मन डुलाए, सहज निरंतर रहो समाए, गुरमुख जाग रहे अवतूता, सद बैरागी तत् परूता, जग सूता मारे आवै जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए, अनहद शब्द बजै दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्बानी, सुन समाद सहज मन राता।

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

जय त्रै गुण भिक्षा जन्म मरी जय राम नाम बिन दुख सही जय चारस पवन संघासन पी जय न्योली कर्म खट कर्म करी जय राम नाम बिन बिरथा सास ली जय अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै अंतर चोर क्यों साध लही जय गुरमुख होए काया गढ़ ली जय अंतर मैल तीर्थ परमी जय मन नहीं सूचा क्या सोच करी जय किरत पया दोष का कौ दीजै अन ना खाहे देही दुख दीजै बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं कीजै मनमुख जन्म जन्म मरी जय सतगुर पूछ संग

दूंदर पास तरीजै तुरकी सेवा राम रुवीजै नानक नाम मिलै कृपा प्रभु की जय राम कली महला पहला अंतर उत्पुज अवर न कोई जो कही है सो प्रभ ते होई जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत पर लहो अवर न कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर

साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल। एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पचह अपमान। नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे है दरगह मान। हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे। तीरथ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे। जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई। जमपुर बहादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई। सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा। शब्द विचार गह गुर सेवा, मन तन निर्मल अभमान अभेवा। कर्म मिले पावे सच नाउ, तुम शरण लागत रहो स्वभाव। तुम ते उपजेओ भगति पाओ, जप जप गुरमुख हर नाउ। हौ मैं गर्भ जाई मन पीनै, झूठ ना पावस पाखंड कीनै। बिन गुर शब्द नहीं घर बार, नानक गुरमुख तत विचार। राम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावह बौरे। ज्यों जन्मे त्यों मरन भया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै। नाम विसार भवजल पया, तन तन देखत गर्भ गया। कनक कामनी स्यों हेत वधाई है, की नाम वसार है परम गया रहाउ। जत सत संयम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर मह काष्ट भया। पुन दान इशनान ना संयम, साध संगत बिन बात जया। लालच लागै नाम बसारियो, आवत जावत जन्म गया। जां जम धाई केस गह मारै, सुरत नहीं मुख काल गया। अहनस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्ब दया। बिन गुर शब्द न गत पत पावह, राम नाम बिन नरक गया। खिन मैं वेस करह नटुआ ज्यो, मोह पाप मह गलत गया। हित उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया। करह विकार वथार कनेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया। हौ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत लेव हो रोग गया। सुख संपत को आवत देखै, साकत मन अभमान पया। जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै, अंतर सहसा दुख पया। अंतकाल किस साथ ना चालै, जो दिसै सब तिसह मया। आद पुरख अपरंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया। मुए को रोवह किसे सुनावह, पै सागर असराल पया। देख कटंब माया ग्रह मंदर, साकत जंजाल पराल पया।

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपहुण।

रखै तेरे भवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राखै सतगुर शब्द विचारी सिंही सुरत अनाह दवाजै कट कट जोत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न परजारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योति अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपरी

जोग जुगत एव पाए, नदरी आवंदा सब किश बिनसै, हर सेती चित लाए, सतगुर नाल तेरी भावनी लागै, तां एह सोझी पाए। एहो जोग ना होवै जोगी, जे कटंब छोड़ पर भवन करहै, ग्रह शरीर मह हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन भेख करे जोगी, रोग ना जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी,

परम पलाई उपदेश कह किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई बाणी लागे सो गत पाए शब्दे सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी एता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हो गुर सलाही सदा अपना

भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जुए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी पै बिन भगत न होई कब ही पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विच हो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे पंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम विचारी शब्द लगे सेई जन निस्तरे भव जल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूजै को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचै नाई प्यारी काया अमृत रही परपूरे पाईऐ शब्द विचारी जो प्रभ खोजह सेई पावह होर फूट मुए अहंकारी

अहंकारी जिचर अंतर सास तिचर सेवा कीच जाए मिलिया राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

किस करना सु कर रहया अवर ना करना जाई। आपे साजे सिट अपाए सिर सिर तंदे लाई। तिसह सरेवो ता सुख पावहु सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाई लख न लखना जाई। आपे मार्ज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई। सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन ना जाई। आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता नगुरी अंध फिरै लोकाई। जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया सतगुर बूझ बुझाई। इक ना नाम हो आप पलाई इक ना गुरमुख दे बुझाई। सदा सदा सलाह हो संत हो तिस दी वड्डी वड्याई। तिस बिन अवरना कोई राजा करत पावस बणत बनाई। न्याओ तिसै का है सद साचा विरले हुक्म मनाई। तिसनो प्राणी सदा त्याव हो जिन गुरमुख बणत बनाई। सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई। सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई। नानक सुन वेख रहया विस्माज मेरा प्रभ रव्या सर्ब थाई। राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

प्रात पुत हारी जिन दिए तुद बंता अर मीता तिस ठाकुर को रख ले हो चीता जिन दिया तुद पवन अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की रहो मन सरना छत्ती अमृत जिन पूजन दिए अंतर खान ठहरावन को दिए बसदा दियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना पेखन को नेतर सुनन को करना हस्त कमावन बासन रसना चरण चलन को सिर कीनो मेरा मन तिस ठाकुर के पूजो पैरा अपवित्र पवित्र जिन तू करया सगल जोन मह तू सिर धरया अब तू सीज पावे नहीं सीजै कार्य सवरै मन प्रभ त्याइजै इहां उहां एकै ओही जत कत देखिए तत तत तोही तिस सेवत

कर मारी, गुर बोहित वडभागी मिलिया, नानक दास संग पाथर तरिया, राम कली महला पंजवा, काहू बिहावै रंग रस रूप, काहू बिहावै माए बाप पूत, काहू बिहावै राज मिलख वपारा, संत बिहावै हर नाम अधारा, रचना साच बनी सबका एक तनी रहाउ, काहू बिहावै वेद अर बाद, काहू बिहावै रसना साद, काहू बिहावै लपट संग नारी, संत रचे केवल नाम मरारी, काहू बिहावै खेलत जुआ, काहू बिहावै अमली हुआ, काहू बिहावै पर दर्ब चुराए, हर जन बिहावै नाम त्याय, काहू बिहावै जोग तप पूजा, काहू रोग सोग परमीजा, काहू पवन धार जात बिहाए, संत बिहावै कीर्तन गाए, काहू बिहावै दिन रैन चालत, काहू बिहावै सो पिड़ मालत, काहू बिहावै बाल पढ़ावत, संत बिहावै हर जस गावत, काहू बिहावै नट नाटक निरते, काहू बिहावै जिया एह हिरते, काहू बिहावै राज मह डरते, संत बिहावै हर जस करते, काहू बिहावै मता मसूरत, काहू बिहावै सेवा जरूरत, काहू बिहावै सोदत जीवत, संत बिहावै

पंजवा दावा अग्न रहे हर बूट मात गर्भ संकट ते शूट जा का नाम सिमरत पहु जाए तैसे संत जना राखे हर राय ऐसे राखन हार दयाल।

हर कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नाश है।

आन अंधेर बंजाई करन कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई एक शब्द लिवलाई।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आ।

हर सिमरत तृप्ति अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोगन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवां मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुसटारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

सतगुर ता पाया सहज सीती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दो तांगा वो हरि केरा मन जिन्नी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाली।

संतोहु शब्द तरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पांच शब्द तित कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पांच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी बेन माणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई कृपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

पाई है। तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म मन्ने है पाई है। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गाव हो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संत हो कथे हो अकथ कहानी।

सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा, तिने अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल नराली, चाला नराली भगतां केरी। विखव मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा। बहुत नाही बोलना, थन्योह तिखी वालोह निक्की। एक मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया। हर वास ना समाणी, कह नानक चाल भगतां। जुग हो जुग नराली,

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सिउ पवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिन्नी मन वसाया कह नानक से पवित जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया।

न है। कित संयम धोता जाय मन तो वोहो शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाय कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एहो सहसा इव जाय जियो मैले बाहरो निर्मल जियो ता मैले तिन्नी जन्म जू है हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा।

जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा सच समाणी जन्म रतन।

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो हो रह गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए, अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परने, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते गे मुख होए, बिन सतगुरु

दाता जे अग्न मह आहार पहुंचावे उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उधर मह तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जेही करतै खेल रचाया जां तिस भाणा तां जम्मिया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटहु रहे लोक बिललाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपिए विचों आप जाए।

मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर तेरा स जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया।

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आई, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, तां तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, तां चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रखिया, जोत राखी तां तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, ते कर्मक माया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले दे बद्रिष्ट होई।

बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रस नहा रस समाणी सच अलख वडाणी तां की गत कही ना जाए कह नानक अमृत नाम सुनो

भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यों लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कह साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे सतगुरु परतख हुंदे बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आन निवाया हर गुरह पाणा दी बड़ियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संत हो सब जगत पैरी पाए जियो राम कली महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा नाल होवंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा गोविंदा मेरे गोविंदा।

सुगड़ सुजाना सद परधाना अमृत हर का नामा चाक अगाणी सारंग पाणे जिनके भाग मथाना तिन ही पाया तिन्ह ते आया सगल तिसै का माणु कहो नानक थिर तख्त निवासी सच तिसै दी बाणु मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा अनहद तुनिए सोहिलड़ा अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभ त्याईए सब किश पाईए मरे ना आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुणी।

हर त्याए मना खिन ना विसारी है। राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है। उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो। जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है। बिनवंत नानक मिल संग साधु दिनस रैन चितारी है। चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा। नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा। रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा। किल विख हरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा। बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने। देख चलत दयाल सुन भगत बखाने। जी जंत सब तुझ त्याव है पुरख पत परमेश्वरा। सर्ब जाचिक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा। साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने। बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझे पछाने। मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया। गुर नाम दिया कुशल थिया सर्ब इच्छा पुनिया। जल ने बुझाई शांत आई मिले चिरी बछुनिया। आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया। बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया। राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद। नित उठ गाइए संतन कै किल वेख सब दुख बनासन। हर नाम जपिए गुरमंतन कै हर नाम लीजै अमयो पीजै। रैन दिनस अराधिए जोग दान अनेक किरिया। लग चरण कमल है साधी है पाओ भगत दयाल मोहन। दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर। त्याए स्वामी नर हरै सुख सागर गोविंद सिमरन। भगत गावह गुण तेरे राम अंध मंगल गुर चरणी लागे। पाए सुख कनेरे राम सुख निदान मिलया दुख हरिया। कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा। भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया।

राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरणी लाए राम आठ पैर अपना प्रभ सिमरह एको नाम त्याए राम त्याए सो प्रभ तरे भवजल रहे आवन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाना सब इच्छ पुन्नी आस पूरी मिले सतगुर पूरिया बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख वसूरिया राम कली महला पंजवा संत सलोक चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुण गाम नानक प्रभ आराधी है विपत निवारण राम संत प्रभ विपत निवारण तिस बिन अवर ना कोई जियो सदा सदा हर सिमरी है जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मनहो ना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे सर्व गुण जगदीसरै कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस भावै सो होए जियो बल जाए नानक सुख है दाते परगास मन तन होए जियो सलोक हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो प्रतपाल अचुत पुरख एको तिसह स्यो रंग लागा कर चरण मस्तक मेल लीने सदा अन दिन जागा जियो पिंड ग्रह थान तिसका तन जोबन धन माल जियो सदा सदा पल जाए नानक सर्ब जिया प्रतपाल जियो सलोक रसना उचरै हर हरि गुण गोविंद वखियान नानक पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखै निदान संत सो स्वामी प्रव रख को अंचल तां कै लाग जियो भज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो एक ओट की जय जियो दीजै आस एक धरनी धरै साध संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरै जन्म मरण बेकार छूते फिर ना लागै दाग जियो बल जाए नानक पुरख पूरन फिर जाका सुहाग जियो सलोक धर्म अर्थ हर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया माथ शंत सगल इच्छ मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो आनंद भया वडभागी हो ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो ग्रह लाल आए पुरब कमाए ताकि उपमा क्या गणा बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कवन रसना गुण भणा आपे मलाए गह कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो बल जाए नानक सदा करते सब मह रहया समाए जियो राग राम कली महला पंजवा रण झुंझनड़ा गाओ सखी हर एक त्याव हो सतगुरु तुम सेव सखी मन चिंदियाड़ा फल पावो राम कली महला पंजवा रुति सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म बांछो साधा धूर आप निवार हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर किलविख काटन पै हरन सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख भंजनो नानक नीत त्याए संत जस गाव हो वडभागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुति महा मूर्त घड़ी गुण उचरत शोभावंत जियो गुण रंग राते तन ते जन जिन्नी

एक मन त्याया सफल जन्म भया तिनका जिन्नी सो प्रभ पाया पुन दान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। सलोक उद्यम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सात उदभावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परहो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत शंत रुत सरस बसंत माह चेत वसाख सुख मास जियो हर जियो नाह मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाह निश्चल आनंद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमुल्या वड भाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक सरण तेरी मिति जम की त्रास जियो। सलोक साध संगत बिन भ्रम मुई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाणे से मेलिया विछोड़े पी आप नानक प्रभ सरनागती जा का वड प्रताप। संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़ काम जियो प्रेम बशोह दहागनी दृष्ट ना करी राम जियो नह दृष्ट आवै मरत हावै महा गर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावै संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक शरदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साजन है जन्म जन्म के मीत चरणहां दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत। शंत रुत बरस सहेलिया सावन पादवे आनंद जियो धान उन्नम बुठे जल तल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई हर नाम नवनिध ग्रह भरी सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रिय रंग जागे नह शिदर लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोहो जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रो जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार ढोल शिंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बशोह जियो सलोक हर तन पाया सुहागनी दौलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगति प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बनी मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पवन भय हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री धारकंत जियो सलोक संत सहाई जी के भवजल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से वीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते टिलना मन ते बिसरै तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरै गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आद कौ आदेश जियो मिनवंत नानक मया तारहो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली।

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार की आजिन चेता ओंकार शैल युग भय ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरे ओंकार गुरमुख तरे उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रिभुवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साथ संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते कीमित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच

भवन मह गुरु गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने घर आवे ऊनव बरसै नीचर तारा उत्तम शब्द सवारन हारा इस एके का जाने पेव आपे करता आपे देव उगवै सूर असुर संघारे ऊचो देख शब्द विचारे ऊपर आदि अंत त्यो लोय आपे करे कथै सुने सोय ओह बधाता मन तन दे ओह बधाता मन मुख सोय रब जग जीवन अवर ना कोय नानक नाम रते पत होय राजन राम रवै हितकारी।

अगमय गोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिय जानए मलाए। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिय नीत। काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल। कस कसवटी सह सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ। जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करत करनी कर पाई। जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई। खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया। खरा खरा आखै सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए। खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया। अस्थर चीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया। गगन गंभीर गगन अंतर वास, गुण गावै सुख सहज निवास। गया न आवै आए न जाय, गुर प्रसाद रहै लिवलाय। गगन अगम अनाथ अजूनी, अस्थिर चीत समाध सुगुनी। हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी, गुरमत सार होर नाम बिहूनी। घर दर फिर था की बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे। केते मात पिता सुत धिया, केते गुर चेले फुन हुआ। काचे गुरते मुक्त ना हुआ, केती नार वर एक संभाल। गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दह दिस ढूंढ करै मह पाया। मेल भया सतगुरु मलाया, गुरमुख गावै गुरमुख बोलै। गुरमुख तोल तलावै तोलै, गुरमुख आवै जाए निसंग। पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार। गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार। नानक गुरमुख पावै पार, चंचल चीत न रही ठाई। चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, चरण कमल उर तारे चीत। चिर जीवन चेतन नित नीत, चिंतत ही दिसै सब कोई। चित है एक तही सुख होए, चित वसै राचै हर नाई। मुक्त भया पत स्यों घर जाए, सीजै दे खुलै एक गंड। छिया नित देखो जग हंड, धूप शाम जे सम कर जान। बंधन काट मुक्त घर आण, छाया शूशी जगत भुलाना।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल।

पूजै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमाव हो, गुर की करनी काहे ताव हो, नानक गुरमत साच समाव हो, टूटै नेहो के बोलह सही, टूटै बाहा दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटै गंठ पड़ै विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवै टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताय, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपण, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुर आपण, निरपव नाम बखान, ढूंगर वास तिखा कणी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखै सब कोई, जय भावै तै दे, गुरु द्वारै देवसी, तिखा नवारै सोय, टंडोलत टूंडत हौ फिरी, तह तह पवन करार, भारे तहते तह पए, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिली, तिनकै हौ बल जाऊं, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाऊं, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाऊं, जिन नाम दिया तिस सेवसां, तिस बलिहारै जाऊं, जो असारे सो ताहसी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर परसादी तिस सम्मला, तां तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना हुआ।

कंध ग्रंत विण नावे क्यों छूटी है जायर सातल अंत गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान ना होए टूटी तंत्र बाब की वाजे नहीं वियोग विछड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

भीड़ बणी बिन साचे क्यों छूटी है हर गुण कर्म मणी आप छडाए छूटी है वड्डा आप धनी गुर प्रसादी छूटी है कृपा आप करे अपने हाथ वडाइया जय भावे तैं दी।

अपना तन मन आगै देव अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द।

आई रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माही गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाही सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखशार साहू सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया

साचो ठाकुर मन वसै हौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे अपना खूले बंद न पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौ मैं खपै खपाए सी बीजो वथ बेकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुट्टै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन बीचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखी विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखी चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारू तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देऊ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेऊ क्या भविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोई रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आई हुक्म सदाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइए पारो, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारो, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी।

इहो मन चल तो सच कर बैसै, नानक नाम आधारू आपे मेल मलाई करता लागे साच प्यारू। हाटी बाटी रह निराली रूख बिरख उदयानी, कंद मूल आहारू खाइय औदू बोलै ज्ञानी। तीरथ नहाइय सुख फल पाइय मैल न लागे काई, गोरख भूत लहारी पा बोलै जोग जुगत बिद साई। हाटी बाटी नींद ना आवे पर घर चेतना डुलाई, बिन नावे मन टेक ना टिकई नानक भूख ना जाई। हाट पटन घर गुरु दिखाया सहजे सच वपारो, खंडत निंदरा अल्प आहारम नानक तत् बिचारू। दर्शन भेख करो जोगिंदरा मुंदरा झोली खिंथा, बारह अंतर एक सरेब हो खट दर्शन एक पंथा। इन बिद मन समझाइए पुरखा बहुड़ चोट ना खाइए, नानक बोले गुरमुख बूजे जोग जुगत इव पाइए। अंतर शब्द निरंतर मुंदरा हों मैं ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारे गुर कै शब्द सो समझ परी। हिंथा झोली भरपुर रहया नानक तारे एक हरी, साचा साहेब साची नाई परखै गुर की बात खरी। ऊंदो खप्पर पांच भू टोपी काया कड़ासन मन जा गोटी, सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम संभाल। कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता, कमन सो अंतर बाहर जुगता, कमन सो आवे कमन सो जाई, कमन सो त्रे भवन रहे आसमाई। कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता, मनमुख बिन सह आवे जाई। नानक गुरमुख साच समाई, क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा। यो तत् बिचारे सो गुरु हमारा, दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा, सतगुरु मिले अंधेरा जाई। नानक हों मैं मेक समाई, सुन निरंतर दीजे बंद, उड्डे ना हंसा पड़े ना कंद, सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे पावे साचा। किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी, किस वखर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो पारी। गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वखर के हम बन जारी। नानक गुरमुख उतर सपारी, चित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया। चित बिद आसा मनसा खाई, चित बिद जोत निरंतर पाई, बिन दंता क्यों खाइए सार, नानक साचा करो विचार। सतगुर कै जन्मे गवन मटाया, अनहत राति इहो मन लाया, मनसाया सा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। त्रै गुण मेटे खाइए सार, नानक तारे तारनहार, आद को कवन विचार कथियले, सुन कहां घर वासो ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले। घट घट कवन निवासो काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निरभउ घर जाइए, सहज संतोख का आसन जाने, क्यों छेदे बहराइए। गुर कै शब्द हउमे बिख मारे, ता निज कर होवे वासो, जिन रच रचिया तिस शब्द पछाणे। नानक ताका दासु कहां ते आवे, कहां एहो जावे, कहां एहो रह समाई, एस शब्द को जो अर्थावे।
तिस गुर तिल ना कमाई, क्यों तत्तै अवगत्तै पावे, गुरमुख लगै प्यारू, आपे सुरता आपे करता, कहो

वह गत मित शब्दे पाई आद कौ विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुर ज्ञान विचारियले घट घट साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार ना करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म विस्माद हुक्म पछाण जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईए साचै शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाने हौ मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किछ सूझै।

एक माया झूठे आवह ठवर ना पावह, दूजे आवागौण भया आवागौण मिटै गुर शब्दी, आपे परखै बख्श लै।

नानक साचर ते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावे, गुरमुख बाणी अकाड़ कढ़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै तरियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर विद जानी, गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपियै अंतर प्यार, गुरमुख पाईऐ शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक होमै जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह उपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाए, साच रतो पत स्यो घर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर विद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारे पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते होमै जाए, नाम रते सच रही समाई, नाम रते जोग जुगत बीचार, नाम रते पावह मूख द्वार, नाम रते त्रि भवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ठ होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान बीचार, बिन नावै बोलै सब वेकार, नानक नाम रते तिनको जयकार, पूरे गुरते नाम पाया जाय, जोग जुगत सच रह समाय, बारहां मह जोगी परमाई, सन्यासी छे चार, गुर कै शब्द जो मर जीवै, सो पाए मूख द्वार, बिन शब्दै सब दूजै लागे, देखो हृदय बीचार, नानक वड्डे से वड भागी, जिन्नी सच रखिया पुर धार, गुरमुख रतन लह लिवलाय, गुरमुख परखै रतन सुभाय, गुरमुख साची कार कमाय, गुरमुख साचे मन पतियाय, गुरमुख अलख लखाए तिस भावै, नानक गुरमुख चोट ना खावै, गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख पावै दरगाह मान, गुरमुख पौ भंजन प्रधान, गुरमुख करनी कार कराय, नानक गुरमुख मेल मलाय, गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद, गुरमुख पावै घट घट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर भरमै आवै जाई, बिन

नौ सरस भार दसवें पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचे राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया परपूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाए मिलिए सुख होवे गुरमुख जागे नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारे कहते मुक्त शब्द निस्तारे गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाए क्यों तत न बूझे चोटा खाए जम दर बाते कोई न राखे बिन शब्द ना ही पत साखे क्यों कर बूझे पावे पार नानक मन मुख ना बुझे गवार कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार सतगुर भेटे मुख द्वार तत ना चीने मन मुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावे मान साच वखर धन पल्ले होए आप तरे तारे पी सोए सहज रत्ता बूझे पत होए ताकी कीमत करे ना कोई जह देखा तह रहिया सुमाई नानक पार परे सच पाई सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है इस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपनी मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नगरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाय सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसे विचों भरम गवाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाय शब्द गुरु भव सागर तरिये इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाण त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलाखे अपारू त्रै गुण मेटे शब्द वसाई ता मन चूटे अहंकारू

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हमें प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन त्रिपतासै नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल न ग्रासै रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद न राखिया शब्द न भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह कहो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज कर

आप खाए ता निर्मल हुए तावत वर्ज रहाय। क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे। गुरमुख मैं बिचो खोवे तव नानक सहज समावे। इहो मन निश्चल हिरदय वसियली गुरमुख मूल पछाण रह। नाभ पवन घर आसन बैसे गुरमुख खोजत तत लह। सो शब्द निरंतर निज घर आसे त्रि भवन जोत सो शब्द लह।

सच सफाकै सच रपै रंग कबहू ना जावै जां एहो हिरदा देह ना होती तो मन कै ठहर रहता नाब कमल असथंब ना हो तो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल असथंब ना हो तो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रह तो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना हो तो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरे है दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हम मैं शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रह समाई नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होई गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होई गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हो मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणे शब्द काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावे जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामे ते सुख होई नामे ही ते सब प्रगट होवे नामे सोजी पाई।

आपे सब रंग माणै, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिरह फरमाणै, मांगह नाम पाए ए भिखिया, तेरे दर्शन कौ कुरबाणै, अविनाशी प्रभ खेल चाया, गुरमुख सोजी होई, नानक सब जुग आपे वरतै, दूजा अवर नाम

है सहसा गया बलाई, ना किस बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाए। अम्ब है सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाए। नानक गुरु

जिस वसिया मन माई महला तीजा, मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए, दुख विच जम्मे दुख मरे, हूं मैं करत विहाई, आवन जान ना सुजई, अंधा अंध कमाई, जो देवै तिसे ना जानई, दिते को लपटाई, नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर ना करना जाई। महला तीजा, सतगुर मिले सदा सुख, जिसनो आपे मेले सोए, सुख है इहो विवेक है, अंतर निर्मल होए, अज्ञान का भ्रम कटी है, ज्ञान प्राप्त होए, नानक एको नदरी आया, जह देखा तह सोई, पौड़ी सच्चै तख्त रचाया, वैसन को जाई, सब किसे आपे आप है, गुर शब्द सुनाई, आपे कुदरत साजियन, कर महल सराई, चांद सूरज दोए चानने, पूरी बणत बनाई, आपे वेखै सुने आप, गुर शब्द त्याई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई, रहाउ सलोक कबीर महती कर कै कालिया, आप पिसाए पिसाई, तैं सह बात ना पुछिया, कबहू ना लाई पाए। महला तीजा, नानक महती कर कै रखिया, सो सहो नदर करी, आपे पीसै आपे कसै, आपे ही लाई ले, यो पिरम प्याला खसम का, जय पावै तैं दे पौड़ी, वेकी सिष्ट उपायन, सब हुक्म आवै जाए समाई, आपे वेख विग सदा, दूजा को नाही, ज्यो पावै त्यों रख तू, गुर शब्द बुझाई, सबना तेरा जोर है, ज्यों भावै तिवै चलाही, तुद जेवड़ मैं नाही को, किस आख सुनाई। श्लोक महला तीजा, परम भलाई सब जग फिरी, हावी होई भाल, सो सहु शांत ना देवई, क्या चलै तिस नाल, गुर प्रसादी हर त्याई है, अंतर रखिया उर तार, नानक घर बैठिया सहो पाया, जा कृपा कीती करतार। महला तीजा, धंधा तावत दिन गया, रहन गवाई सोए, कूड़ बोल बेख खाया, मनमुख चलिया रोए, सिरे उपर जम डांड है, दूजे पाए पत खोए, हर नाम कदे ना चेते हो, फिर आमन जाना होए, गुर प्रसादी हर मन वसै, जम डांड ना लागे कोई, नानक सहजे मिल रहे, कर्म प्राप्त होए। पौड़ी, एक अपनी सिखती लायन, दे सतगुर मती, एक नानू नाउ बख्शियन, अस्थिर हर सती, पौन पानी वै संतरो, हुक्म करह भगती, इनानो पौ अगला, पूरी बणत बणती, सब इको

कूई। राम कसौटी सो सह जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिय क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी हों मैं छड़ै ना कोई। गुर प्रसादी हों मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहै जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारू भाऊ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करी पौड़ी।

ना दूजह बीचारा, सब किश तेरा खेल है, सच सिरजन हारा, जिस भावै तिस बख्श लै, सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावे, माया नू फिरे तपा सदावे, परमे भूला सब तीर्थ गह, ओ तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मूखंतर पावे। महला तीजा, सो तपा जे इहो तप काले, सतगुर नो मिले शब्द संभाले, सतगुर की सेवा इहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावे मान। पौड़ी, रात दिन स उपायन, संसार की वर्तन, गुरमती घट चानना, अनेर बनासन, हुक्मे ही सब साजियन, रबिया सब वन त्रिण, सब किसे आपे आप है, गुरमुख सदा हर पहन, शब्दे ही सोजी पई, सच्चै आप बुझाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए नायाखियन, जिनके चित में भरम, किस दै दितै नानका, ते हो जेहा धर्म, अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए, तिसका भोजन नानका, विरला पाए कोई। महला तीजा, अभ्यागत एह ना आखियन, जे पर कर भोजन करेन, उदरै कारण अपने, बहले भेख करेन, अभ्यागत से नानका, जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सहो अपना, निज कार रहन करेन। पौड़ी, अंबर धरत विछोड़ियन, विच सच्चा असराव, घर दर सबो सच है, जिस विच सच्चा नाव, सब सच्चा हुक्म वर्तदा, गुरमुख सच समाव, सच्चा आप तखत सच्चा, वह सच्चा करे नियाव, सब सच्चो सच वर्तदा, गुरमुख अलख लखाई।

नानक नौ निद पाई जे चलै तिसै रजाई महला तीजा सहजे सतगुर ना सेवियो विच हों मैं जन्म बनास रसना हर रसना चखियो कमल ना होयो परगास भिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश एक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिग वास जाय आपे नदर करे प्रभ सच्चा ता होवै दासन दास ता अन दिन सेवा करे सतगुरु की कबह न छोड़ै पास ज्यों जल मैं कमल अलिप तो वरतै त्यों विचे ग्रह उदास जन नानक करे कराया सबको ज्यों पावै त्यों हर गुणतास पौड़ी।

लोभ रत विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का पौ दुरमत मैल गुआए। नानक तेजन सोहणी जो रते हर रंग लाए, महला तीजा राम कली राम मन वसिया, तां बनिया शिंगार गुर कै शब्द कमल बिगसिया, तां सौंपिया भगत भंडार।

महला तीजा बिन सतगुर सेवे शांत ना आवी दूजी नाही जाए जे बहुतेरा लुचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे भाई खुआए तिन जम्मन मरन ना चुकई हौ मैं विच दुख पाए जिन्नी सतगुर स्यो चित लाया सो खाली कोई नाही तिन जम की तलब ना होवे ना होए दुख सहाहे नानक गुरमुख उबरे सच्चा शब्द सुवाहे पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदे सब ताव है आप निश्चल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निज कर वासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। सलोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरतै सच नानक हुक्म है जो बुझै सो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरै हुक्म ना बुझै सच नानक हर का पाणा मन्ने सो भगत होए बिन मन्ने कच न कच महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार होए थाओ कथाओ ना जाननी उने अंतर लोभ विकार होए अपने स्वाए आए बह गल्ला करह ओना मारे जम जंदार।

विचार सतगुर मिले तन आम दड़ाई सब किल विख कटन हार नाम जपे नामो अरादी तिस जन को करहो सब नमस्कार मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी तुद जेवड़ दाता नाही किसे आख सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाई है रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मलाई है घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसे प्याई श्लोक महला तीजा बाबाणिया कहानिया पुत सपुत करेन जे सत गुरु भावे सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच समालेन नानक आए से प्रवान पहे जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंधला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन कूड़ कसत कमावंदे पर निंदा सदा करेन ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिष्ट सब कीती एक कूड़ कसत लायन मनमुख वे गूती गुरमुख सदा त्याई है अंदर हर प्रीति जिनको पोतै पुन है इन वात सपीति नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई श्लोक महला पहला सती पाप कर सत कमाही गुर दीखिया घर देवन जाहि स्त्री पुरख है खटिया भाव भावे आवो भावे जाओ शास्त्र वेद न माने कोए आपो आपे पूजा होए काजी होए कै बह न्याय फेरे तस्बी करे खुदाई बड्डी लै कै हक गवाए जे को पुछे ता पढ़ सुनाई तुरक मंत्र कन हृदय समाई लोक महावे चाड़ी खाई चौंका दे कै सुचा होए ऐसा हिंदू वेखो कोए जोगी गिरही जटा बेपूत आगे पाछे रोवह पूत जोग न पाया जुगत गवाई कित कारण सिर शाही पाई।

कै घर हिंदू आवै सूत जनेऊ पढ़ गल पावै सूत पाए करे बुरियाई नाता धूता थाए ना पाई मुसलमान करे वडियाई बिन गुर पीरै को थाए ना पाई राह दसाए उथे को जाए करनी बाजो किस्त ना पाए जोगी कै घर जुगत दसाई।

संताप औ हट पट्टण में है भी क्या करे सो अवतूती सेवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्द करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े न कंध बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाली काया की अगन ब्रह्म पर जाली सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मह रूपे थम अहनस अंतर रह ध्यान ते बैरागी सत समान।

जाय काहे भीखिया मंगण जाय पौड़ी। हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी घर माहे बधाता मनमुख हर मंदिर की सार ना।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाण सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खुहु केहु संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार उस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे उस पिछे डुब दे पी तरना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता हुसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपे। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपे।

सचो पाइए कूड़े कूड़ा माना। नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पया परवाना। महला पहला साहिब मेरा उजला जे को चित करे। नानक सोई सेवी है सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवी है जित सेवे दुख जाए। अवगुण वंजन गुण रवह मन सुख वसै आए। पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा। गुरमुख पतियायन एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन। जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाए लायन। नानक नाम ते आई है सच्ची वड्याई। शुद्ध राम कली की वार महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पंजवां। जैसा

कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मेले प्रीतम मोहे गुर पूरा मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिया जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिया कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा आनंद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुर्बानिए गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया सलोक महला पंजवां भीड़ो मोक लाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवां बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दा तार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै सलोक महला पंजवां धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाय धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रते रंग गोविंद कै हों तिन बलिहारै

जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरियां हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम है पाणिया सलोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसके मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन करन समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम साध ही भोगे भोग महला पंजवां।

ब्राह्मणी टिचर रखण गांड जित दिन किश ना हो गई तित दिन बोलन गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई

बरे जो सतगुर सरन परे पौड़ी जो रते दीदार से सच हाक जिन्नी जाता खसम क्यों लभे तिना खाक मन मैला वेकार होए संग पाक दिसे सच्चा महल खुले भरम ताक जिसे दिखाले महल तिस ना मिले ताक मन तन हुए निहाल बिंदक नदर झाक नौ निद नाम निदान गुर कै शब्द लाग किसे मिले संत खाक मस्तक जिसे भाग सलोक महला पंजवा हरनाखी को सच वैन सुनाई जो तौ करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनो छबीली फिर तैढा मन साधारण दुर्जन सेती निहुर चायू

लाई तहों लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी तेरे औगण तिसके सब गवाए गल सीती लाए सवारी कर्महीन धन करै बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव हो रात मरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मन सा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराध मन सब किलविख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार ऊनी छड़िया माया सुआवड़ा धन संचिया नाम अपार अठे पहर इक तैलिवै मन्ने न हुक्म अपार जन नानक मंगै दान एक देहो दर्स मन प्यार पौड़ी जिस तू आवै चेत तिसनु सदा सुख जिस तू आवै चेता

ओ हर हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुगता तोह कुटे क्या फल पावे हंसा विच बैठा बग न बणी नित बैठा मच्छी नो तार लावे जां हंस सुभा विचार।

प्यारे पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिस का कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हों मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो भई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थी जिसनो तेरी मया ना पोहै अग्नई किसनो सदा दयाल जिन गुर ते

सो होगा हरख आनंद, हुक्मे जपे निरोधर गुरमंद, हुक्मे आवन जान रहाई, नानक जाको भगती लाई पौड़ी, हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार, हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार, सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार, सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार, ओह ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार, मंगै अमृत नाम ना आवै कदे हार, कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार, सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा एह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही कढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे।

जिस भगती लाए नानक विरले पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हौ जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खणे दिनस रहन तेरा नाउ सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है रोग सोग दुख वंजै जिस नाउ मन वसै तिसह प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हौ तुद बिन अड ना लहंदी। महला पंजवा सस वरायण नानक जीओ ससुरा वादी जेठो पौ पोलू है हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारण जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारण जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो जिसनो एको रंग भगत सो जानो।

सीलवंत प्रधान हृदय सचाविया अंतर बाहर एक एक रीताविया मन दर्शन की प्यास चरण दसाविया शोभा बनी सिंगार खसम जा राविया मिलिया आए संजोग जहां तिस पाविया।

मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कू सतगुर दिता ढूंढ वजाई थिया थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सुवन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमति आगंजत पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भागा।

अंग दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवा आहर सब करदा फिरे आहर एक ना होए नानक जित आहर जग उदर है विरला बूझै कोई पौड़ी वड्डी हूं वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरा वस तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर

दलाली सतगुरे आखे सच्चा करी सा बात हुए दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्ले हुए जंगाली दर दरवेश खसम दे नाए सच्चे बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली हो रे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखे के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवा गौन चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहि आप आपे सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब उम

में लो गुर का शब्द गुड़ की नरे तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दी नरे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाउ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कै कर जानी हम निर धन ज्यो एहो धन पाया मरते फूट गमानी करै गमान चुभै तिस सूला को काढ़न को नाही अजै सो चोभ को बिलल बलाते नरके घोर पचाई कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान ना कटते अपने गुर प्रसादे अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

बोले पांडे दोजक पर है रहा आपनी ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उदर पर है चौदस अमावस रच रच मांग है कर दीपक लै कूप पर है तू ब्राह्मण मैं कांसिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब मर है तरवर एक अनंत डार साखा पोहप पत्थर रस भरिया ए अमृत की बाड़ी है रे दिन हर पूरे करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जानी रहाव पवर एक पोह परस बीदा बारह ले उर तरिया सोरह मदे पवन च कोरिया आकाशे फर फरिया सहज सुन एक बिरवा उपजिया धरती जल हर सो

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाव बुद्ध बेभूत चढ़ाव अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जाहि पलाई जे सिमरन तुझ पूहै ना माई। सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइय संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार,

बंधन पाया, मुख तै गुर अनल बुझाया, जब नक सिक इहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत उन मन रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाउ, उल्टी ले सकत सहारं, पैसी ले गगन मजारं, बेदी अले चक्र पुवंगा, पेटी अले रायन संगा, चूकी अले मोह मयासा, सस तीनो सूर ग्रासा, जब कुंभक पर पुरनीना, तह बाजे अनहद बीना, बकतै बक शब्द सुनाया।

फल सेवर पाका, मूर्ख मुग्ध गवार, हर भयो खांड रेत मह बिखरियो, हस्ती चुनियो ना जाई, कह कमीर कुल जात पा।

खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा प्रणव परम तत् है सतगुरु होए लखाया राम कले कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अग्न दह काया कल्प कीजै असमेध जग कीजै सोना गर्भ दान दीजै राम नाम सर तउ ना पूजै छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजै हर का नाम नित नित है लीजै रहाउ गंगा जो गोदावर जाइय कुंभ जो केदार नहाइय गोमती सहस गऊ दान कीजै कोट जो तीर्थ करै तन जो हिवाले।

वचन हिरण हुए कैसे, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूटै, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाऊ। हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कब है ना नासी, कहो रब दास सब है नहीं समझस, भूल

परम पुरुष की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर खाती जागत रह सो कबहो ना सोए तीन तलोक समाध पलोवे बीज मंत्र लै हृदय रह मनुआ उल्ट सुन मह गह जागत रह ना अलिया भाख है पांचो इंद्री बस कर राख है।

धारी असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सोन झर झरे जगन्नाथ स्यों गोष्ट करे चौ मुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्ब कला ले आपे रह मन मानक रत्ना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे तुलके चवर संख कान गाजे।

जप अहनस नाम हरे। कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास तरे रहाउ। हर हर नाम जपह आराध, सेवक पाए खरे। किल बिख दोख गए सब नीकर, ज्यो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावह, मुख बोलह नर नर हरे। पंच दोख असाध नगर मह, एक खिन पल दूर करे। वड भागी हर नाम त्यावह, हर के भगत हरे। तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुग्ध निस्तरे। किरपा किरपा धार जग जीवन, रख ले वो सरन परे। नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो लाज हरे। नट महला चौथा, राम जप जन राम नाम रले। राम नाम जपियो गुरबचनी, हर धारी हर कृपले रहाउ। हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले। हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले। पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले। विच देही दोख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यों देखै सस कमले। उनवै कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले। हमरै स्वामी लोच हम लाई, हम जीवह देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेल हो आनंद भले। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे। गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ। उत्तम जगन्ना जगदीश्वर, हम पापी सरन रखे। तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे। हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग।

बालक स्वामी हमरा कोह बड़ पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उधरेओ। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारेओ। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी। हौ बल बल बल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए। जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम। तुम वड वड पुरख वडगे,

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन काल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठ है बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौरे देवस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर पंच है हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल पंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रहु हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भये हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भये गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कलयुग विच उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल बिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

भावे मन प्यास बहुत दरसावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कवन योग कवन ज्ञान त्या

अंचला गहायो जाने अपने को मन बीतो प्रेम की खोरे जस गावत भगत रासे उपजेओ माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आना पेखो होरी नानक मेल लियो दा।

खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान।

काल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्शन हाल

हर हर नाम उरतारी, हर हर कथा बनी अत मीठी, ज्यों गूंगा गटक सम्हारी, रसना साध चखे पाए दूजे, हत फीके लोभ बिकारी, जो गुरमुख साध चखे है राम नामा, सब अनरस साध विसारी, गुरमत राम नाम धन पाया।

दहलिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हौ सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवे जम काल खड़ा सिर मारी उगवे दिनस आल जाल संभाले बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने पी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड जमाया सब कूड़े के खलवारी साकत नर सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरे शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नक खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खींच।

हर अमृत सर नावारे, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारी रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजाको, लै बैकुंठ सधारी,

विचारी सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारी जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किसना सम्हारी जब घर मंदिर आग लगानी कड कूप कड्डे पनेहारी साकत स्यो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारी साकत बचन बिशुआ ज्यो डसी तज साकत परै परारी लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सुवारी गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत अतनीके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

एका नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुचकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

तन मान प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए।

निस्तारी नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह कहो हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन भारी श्रद्धा श्रद्धा उपाई मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन धीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देही गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पाव हो सत संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर सुमेर मोर बहु नाचै जब उनवै कन कनहारे साकत को अमृत बहु सिंचो हो सब डाल फूल बिस्कारे ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड़ै बिख खारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोलै है पर उपकारी संतै संत मिलै मन बिगसै ज्यो जल मिल कमल सवारी लोभ लहर सब सुवान हलक है हलक्यो सबह बिगारी मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारी राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारी नानक मैं तारी।

प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अघम अगम अगाद बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वड भागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म वधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी

अमर सायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाईए बड़ भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर के आयो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गाली है, ज्यों लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो, हर राम नाम मैं रहो लागो।

माली घोड़ा मोहल्ला चौथा मेरे मन भज हर हर नाम गोपाला मेरा मन तन लीन भया राम नामे मत गुरमत राम रसाला रहाउ गुरमत नाम त्याई हर हर मन जपिए हर जपमाला जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला जिन हर नाम त्याया तिन चूके सर्ब जंजाला तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला हम बारक किशु ना जानहू हर मात पिता प्रतपाला पर माया अगन नित मेलते गुर राखे दीन दयाला बहु मैले निर्मल होया सब किल बिख हर जस जाला मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला माली गौड़ा महला चौथा मेरे मन हर भज सब किल बिख काट हर हर उरतार्यो गुरपूरै मेरा सीस कीजै गुरवाट रहाउ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै तिस मन देवो कट काट हर साजन मेलियो गुरपूरै गुरबचन बिकानो हट हाट मकर पराग दान बहु किया शरीर दियो अध काट बिन हर नाम को मुक्त ना पावै बहु कंचन दीजै कट काट हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट त्रिकुटी फोर भरम पौ भागा लज भानी मटकी माट कल युग गुरपूरा तिन पाया जिन तुर मस्त

नरे नदान पतत पावन नाम हरि कोट भगत उदार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत भज पूर्ण काम रहाउ बूढ़त कौ जय।